ताइबंग ने शोना बा कोलोई दी ताजेने अदुबु मबु नहा के सक्तम दी उजग उजगे फंग दी दो ननाइना कदाई द थीरुनी करम न फंगनी पुमना मक्तगे अथोईबा चानबी हैब नहाकबु इरोल नुंगदबु लैबरा अवांग बचिंगदोल दबु फंगदरा अमुक्त दि फंगन बियु नहा के थौजाल खुरुमजरी तो लबी ननाइना।

0: किशन, आज तो छुट्टी है इसलिए देर तक खेलते हैं। माँ और पिताजी भी मान गए हैं। पहले क्या खेलें?
1: दीदी तुम ही बताओ ना।
0: तुमने ठीक कहा, मैं बड़ी हूँ इसलिए मुझे ही बताना पड़ेगा। बड़ों के बाद छोटों को माननी चाहिए। चलो छात्र अध्यापक का खेल खेलते हैं।
1: अच्छा।
0: मैं अध्यापिका बनूंगी, मैं मैडम रोजी बनूंगी और तुम छात्र बनोगे। मैं अध्यापिका की तरह तुमसे सवाल पूछूंगी और तुम स्टूडेंट की तरह उनका जवाब देना।
1: ठीक है दीदी, मैं बैठ जाता हूँ।
0: तुम बैठो, अभी मैं क्लास में आती हूँ।
1: सुप्रभात मैडम जी।
0: सुप्रभात, सुप्रभात, बैठ।

0: जाओ, आज कौन सा पाठ पढ़ाया जाए?
1: आज शनिवार है, यानी नो बैग डे।
0: तो आज कुछ खेलों के साथ साथ और कक्षा की साफ सफाई भी करेंगे। ये भी एक तरह की सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य है, अर्थात सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। अर्थात सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क यानी SUPW।
1: क्या आप भी झाड़ू और पोछा लगाएंगी?
0: तुम साफ सफाई करोगे और मैं देखूंगी, जहाँ तुमसे कोई कमी रह जाएगी मैं बता दूंगी।
1: मैडम, मैं अकेला ही साफ सफाई क्यों करूं? आपको भी मेरे साथ करनी होगी।
0: अरे, क्या तुम नहीं जानते मैं अध्यापिका हूँ, अपनी अध्यापिका की बात माननी पड़ती है।
1: नहीं, तुम अध्यापिका नहीं हो, तुम तो मेरी दीदी हो। अध्यापिका बनने के नाटक करके मुझे सारा काम करवाना चाहती हो, है ना?
0: अच्छा है ना, इससे सारा कमरा तो साफ हो जाएगा।
1: नहीं, इससे अच्छा हम दोनों मिलकर फुटबॉल खेलते हैं।
0: थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर खेलेंगे। अध्यापिका बनना तो बहुत मुश्किल का काम है।
1: नहीं नहीं, अभी खेलेंगे, तुम थक नहीं सकती दीदी, मैं माँ को बता दूंगा।
0: अगर तुमने माँ को बता दिया तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलूंगी। हिम्मत है तो बताओ, मैं तो माँ की लाडली हूँ, मुझे कुछ नहीं डांटेंगी, मैं तो समझदार भी हूँ, तुम ही नटखट हो।
1: मैं नटखट कहाँ हूँ? तुमने कहा था कि अध्यापक छात्र का खेल खेलते हैं, मैंने तुम्हारी बात मानी। मानी नहीं?
0: मानी।
1: तुमने तो मेरी बात नहीं मानी, फिर मैं नटखट कैसे हुआ? मैं नहीं, नटखट तो तुम हो।
0: नहीं,
1: इसलिए तुमने मेरे साथ फुटबॉल खेलने से मना कर दिया।
0: मैं आज थक गई हूँ, इसलिए मना कर रही हूँ। हर दिन तो तुम्हारे साथ खेलती हूँ, आज थोड़ी सी थक गई हूँ, तो क्या एक दिन मना नहीं कर सकती?
1: फिर भी मैं माँ को बताऊंगा। माँ, माँ, दीदी।
2: हाँ हाँ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारी दीदी को?
1: माँ, दीदी ने पहले जो खेल खेलने के लिए कहा, मैंने उनके साथ खेला, लेकिन अब जब मेरी बारी आई तो ये कह रही है कि थक गई और फुटबॉल नहीं खेलेगी।
2: अच्छा बेमा, तुम्हारा छोटा भाई क्या कह रहा है, जरा तुम भी बताओ।
0: माँ, सच में मैं आज बहुत थक गई हूँ, इसलिए फुटबॉल खेलने का मन नहीं है।
2: अच्छा बेमा, नहीं मान रही तो क्या हुआ, आज मेरे साथ खेल लो बेटा। चलो बताओ, तुम्हारी फुटबॉल कहाँ है?
1: नहीं माँ, मुझे तो दीदी के साथ ही खेलना है, आप तो अब बच्ची नहीं रही।
2: अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज खेल की जगह हम सब मिलकर पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद मैं तुम दोनों को एक मजेदार कहानी सुनाऊंगी।
0: माँ, कहानी अगर पुराने जमाने के राजाओं वाली हो तो उसमें एक सुंदर महारानी भी डालना।
1: हाँ माँ, सुनाओ ना, और उस राजा की एक सुंदर राजकुमारी भी कहानी में डालना, तब कहानी बहुत रोचक बनेगी।
2: अच्छा ठीक है ठीक है।
1: माँ, जो हम कह रहे हैं ना, वो हमारी किताब में भी है।
2: ओ अच्छा, अब समझ गई, लाओ अपनी किताब मुझे दो।
0: हाँ माँ, ये लीजिए।
2: ये तो बहुत सुंदर कविता है, इसमें एक माँ अपने बच्चे को कहानी सुना रही है। ये कविता माँ और बच्चे के प्यार भरे रिश्ते को बहुत सुंदरता से बताती है। संसार के हर प्राणी की माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे कितने ही शत्रु आ जाए, आंधी आए या तूफान। हर माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए एक अटल पर्वत की तरह मजबूती से खड़े रहती है।
0: सच में माँ?
2: माँ यानी माँ, इस शब्द का कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। जिनके पास माँ होती है, उन्हें दुनिया में कभी अकेला या डरा हुआ महसूस नहीं होता उसे।
1: ऐसा क्यों माँ?
2: तो अच्छा बताओ, जब बेमने तुम्हारे साथ खेल

0: खेलने से मना कर दिया था, तब तुमने क्या कहा था?
1: मैंने कहा था कि मैं माँ को बता दूंगा।
0: बिल्कुल, तुमने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हें विश्वास था कि माँ तुम्हारे साथ देगी तो तुम्हारी बात जरूर सुनेगी। इसी तरह हर बच्चा अपनी माँ पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। माँ ही बच्चों का सबसे बड़ा सहारा होती है।
1: हाँ, ये तो सच है माँ।
0: फिर
1: अब मैं समझ गया, हम बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। जब स्कूल से लौटने पर आप घर पर नहीं होती तो हमें नाश्ता करने का भी मन नहीं करता।
0: बीमा, तुम भी किशन की तरह मेरे ना होने पर दुखी होती हो क्या?
2: जरूर माँ, मेरा तो रोने का मन करता है जब हम स्कूल से लौटते हैं और आप खुशी खुशी फाटक पर हमारा इंतजार करती है। वही हमारे लिए सबसे खुशी का पल होता है।
0: वही, बिल्कुल वही। इस कविता का भाव भी वही है। इसमें माँ और बच्चों के प्यार भरे संबंध को बहुत सुंदरता से दिखाया गया है।
1: अच्छा,
0: माँ क्या होती है और माँ के साथ बच्चों का प्रेम, ममता और अपनापन इस कविता का मुख्य संदेश है।
2: माँ, मैं भी एक बात कहूँ?
0: हाँ, कहो, तुम जो भी कहोगी मैं खुशी खुशी उसे सुनूंगी।
2: जब ठोकर लगती है तब भी लोग हाय माँ कह उठते हैं, ऐसा क्यों होता है माँ? आप ही बताइए ना।
0: बेटा, क्योंकि माँ हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा होती है। बचपन से जब भी हमें डर या परेशानी होती है तो सबसे पहले माँ की याद आती है। इसलिए अचानक चोट लगने या घबराहट होने पर हमारे मुंह से अपने आप हाय माँ निकल जाती है। ये माँ के प्रति हमारे प्रेम, विश्वास और अपनेपन का प्रतीक होता है बेटा।
1: माँ,
0: हाँ बेटा,
1: मैं भी ऐसा ही करता हूँ, और ऐसा कहने से लगता है कि मेरा दर्द कम हो गया है।
0: अच्छा ठीक है, अब तुम्हारी किताब की ये कविता पढ़ते हैं। इसके बाद मैं इसका मूल भाव तुम लोगों को एक कहानी की तरह सुनाऊंगी, ठीक है ना?
1: ठीक है
0: ठीक है
1: माँ।
0: माँ। माँ कहे एक कहानी। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे ये छेती, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ, कह लेती ही लेती, राजा था या रानी? राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तू है हाथी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात ब्राह्मण करते थे तेरे, जहां सुर भी मनमानी। हाँ माँ कहे एक कहानी।
2: वाह माँ, आपकी कविता सुनाने का अंदाज बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत आनंद आया।
0: तुम भी ना, अब कविता का मूल भाव कहानी की तरह सुनाती हूँ। एक दिन एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार से कहता है, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। माँ मुस्कुराकर उसे पूछती है, बेटा क्या तुम मुझे अपनी नानी समझ बैठे हो? बच्चा हंसते हुए कहता है, माँ आप मेरी नानी की बेटी ही तो है, इसलिए आज आप ही मुझे कहानी सुनाइए। बच्चे की जिद और प्यार देखकर माँ कहानी सुनाना शुरू करती है। वो कहती है, मेरे प्यारे लाल ध्यान से सुनो, बहुत समय पहले एक सुंदर उपवन था। सुबह सुबह तुम्हारे पिताजी वहाँ भ्रमण करने जाते थे। वहाँ का वातावरण इतना शांत और मनोहर था कि पक्षी भी अपनी मर्जी से मधुर स्वर में गाते थे। इस तरह माँ की मीठी बातें और कहानी सुनकर बच्चा बहुत खुश हो जाता है। वो बड़े ध्यान और उत्साह से माँ की कहानी सुनता रहता है।
1: अच्छा।
0: इस तरह माँ और बच्चे के बीच का प्यार अपनापन और कहानी सुनाने का सुंदर दृश्य इस कविता में दिखाया गया है। कविता ये संदेश देती है कि माँ की कहानियाँ बच्चों के जीवन में आनंद, संस्कार और कल्पना की दुनिया का विकास करती है।
1: माँ, कविता यह खत्म हो गई क्या?
2: किताब में तो यहाँ तक ही लिखा है।
0: तुम्हारी किताब में ये कविता सिर्फ अंश मात्र है, पूरी कविता नहीं है। लेकिन मैं इस कविता में छिपे हुए संदेश को तुम्हें बता देती हूँ। ये कविता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है।
2: माँ आगे बताइए ना।
0: बताती हूँ, सब्र रखो। कहानी के माध्यम से माँ बच्चे को प्रेम, ममता, त्याग और करुणा का महत्व समझाती है। बच्चा कहानी सुनते सुनते उसके भाव को समझने लगता है और उसके मन में दया तथा संवेदना के भाव जागते हैं। इस कविता का मुख्य संदेश ये है कि माँ की ममता सबसे महान होती है। हमें सभी जीव जंतुओं के प्रति दया, प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए।
1: अच्छा।
0: साथ ही दूसरों के दुख को समझना और उनकी सहायता करना एक अच्छा मनुष्य बनने की पहचान है। इस प्रकार उन्होंने बहुत प्यारा संदेश दिया है और एक बच्चे को सोचने और निर्णय लेने का अवसर भी दिया है उन्होंने।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि इसमें कहानी भी है और कविता भी, दोनों का आनंद एक साथ मिल गया।
2: माँ हमें बहुत मजा आया।
0: मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता से हमें प्रेम, दया, करुणा और अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। तुम दोनों भी बड़े होकर अच्छे, दयालु और संस्कारी इंसान बनना है।
2: जी माँ, हम आपकी बात हमेशा याद रखेंगे और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे।
0: बहुत अच्छा, तो आज के लिए यहीं तक तुम दोनों की राजा रानी की कहानी फिर किसी दूसरे दिन सुनाऊंगी।
2: ठीक है माँ।
1: फिर किसी दिन जल्दी नई कहानी सुनाएगा।
0: जरूर। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलो मुस्कुराते हुए अपने अपने काम करते हैं।

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजेयु की पुंग तरेट मखाई तारे मणिपुरी दा पाउ ताबिरसे आकाशवाणी इम्फाल खेत्रुमयुम चित्रभानु ना पाउ पाजरी अहानबद मरुओइब पाउ चे इसी के अहम लोक सुबह नेशनल लोक अदालत राज्य इसी के तुंगान तुंगान बद जिला सिंह पांगथोक लगनी भारत ने युम्बु ओइदुना तरा निपान सुबह ब्रिक्स मिफम गसीदगी न्यू दिल्ली की भारत मंडपम द होरगनी अमशुंग भारत अमशुंग रशिया लेबा अनि के मरकता अपब मरी थम नमय मतांग द खनखरे चेयर की अहम लग सुबह नेशनल लोक अदालत राज्य के तोान तोब जिला सिंह पांथो लगनी थरम से मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी ने मूंब थोदा इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट जिला की इम्फाल की लंफेपा लेब कोर्ट कॉम्प्लेक्स पांथोनी मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी की नोटिफिकेशन नेशनल लॉ अदालत अयुब पुंग तारादगी होदुना नुथुल पुंग मरी फाउब चथगनी बेंच अहम थोना पांथोदर्ब नेशनल लॉ अदालत बैंक रिकवरी इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल मोटर एक्सटेंड स्कीम मेट्रीमोनियल डिस्प्यूट रेवेन्यू केस नौना तोान तोब केस लखुतना वरुशन पुरक होनागनी भारत अमेरिका के एम्बेसडर सर्गियो गोर्ग राज्यपाल अजय कुमार वाला मुख्यमंत्री युमनांग खेमचांगा उनखरे एन एच आई डी सी एल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संतोष कुमार रायगसुंग राज्यपाल उनखी उनब चखोतौरंग लमद मांगलोम चंसीनबगीदम एन एच आई डी सी एल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी तेंबा पीनेबाद कूम खनखी अमायब अमायबी पेना की रेफ्रेसर कोर्स कम ट्रेनिंग प्रोग्राम तरानीपान सुब उनो कूनोदे हूंब थौरम लिंग कुंतरुकगी होरगनी थौरम से था कुनफाव चथेगनी उत्तरा संगलें सना कनूंग सिंधु पांथोदब थौरम से हौदोपगी थौरम आर्ट एंड कल्चर मंत्री खुराइजम लोकेन सरुक यागनी राज्य आईन कायब पादब थौदोंगदम सेक्यूरीटी फोर्स तीहुबगीबंग एरिया डोमिनेशन की थब मखा चथरी राज्य पुलिस कंट्रोल रूम की पाने हाई थौबाल डिस्ट्रिक पुलिस निफुतरुक सुब असम राइफल्स की अपुन कांबू आईन थिंख्रब लालूलूप यू एन एल एफ की एक्टिव कार्डर फारे मयोसी थौबाल जिला की थौबाल पुलिस स्टेशन कौनब लमदिंग खुमन तेन लेकाय एरिया फाबनी मयोसी चका अनी पानब गाड़ी यौन अटे पोलम फाखी यूसे किसीद टेक्नोपल पुलिस टेक्नोपल जिला की खरो खुलेन एरिया थीहुंबगी थबक चथबद यू एन एल एफ की एक्टिव कार्डर फाखी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इम्फाल सेंटर हाई लाब हमनी राज्य की मफम खुद अख अराव यौन नौ चूरब ये सेंटर पीब वेदर रिपोर्ट की मतंग राज्य की जिला खुद तोान तोब मफम खरद अख अराव यौन नौ चूरब ये ताब पाव से आकाशवाणी इम्फाल भारत युम्बु ओइदुना तरानीपान सुब ब्रिक्स मिफम न्यू दिल्ली की भारत मंडपम होरगनी भारत युम्बु ओइदुना पांथोकतिरब मिफम टीम बिल्डिंग फॉर रिजिलिएंस इनोवेशन कोऑपरेशन सस्टेनेबिलिटी हाइबसिनी नुमिनी चथगदब मिफम ब्रिक्स लेबाक सिंग पार्टनर लेबाक सिंग सरुक यागनी मालेंग की अपुनब मिसिंग की चाद निफुमापन मालेंग की जीडीपी की चाद निफुदी ब्रिक्स लेबाक सिंग ओइरी मिफम रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग साउथ अफ्रीका इजिप्त इंडोनेशिया ईरान के राष्ट्रपति सिंह यूथोपिया की प्रधानमंत्री नरसिंह सिंह सरुक यागनी ब्रिक्स मिफम यौनबगीदम ब्रिक्स लुचिंग सिंह भारत तुंगे ब्रिक्स मेंबर लेबाक सिंह भारत मंडपम भारत इनोवेट एग्जीबिशन येंगनी मखोई ने उचरा कयामरों सु थागनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स लुचिंग सिंह सु मिफम पांथोकनी मिफम असिगी मतांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशुम ने हाय
1: इस वर्ष हम ब्रिक्स के 20 ईयर्स मना रहे हैं। 2006 में जब इस समूह की शुरुआत हुई थी तो इसमें केवल चार देश थे। आज ब्रिक्स और ब्रिक्स पार्टनर्स मिलाकर 21 कंट्रीज का हमारा परिवार है। आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लेबा मरी नहुना यंगे राजनीति सेल थूम गाक्सल एनर्जी स्पेस स्किल मोबिलिटी यौन तोान तोब लमसिंग लेबा पानी खनखी मथक्ता लमदी मालें फिवम यौन नोचुप एशिया ब्लॉक्सी फिवम की पाफुम क्या खनखी सेल थूम मंत्री निर्मला सीतारमन रशियन फेडरेशन की अहम उप प्रधान मंत्री डेनिस मांतुरोफ ब्रिक्स मिफुम की मांगे न्यू दिल्ली उन्खरे उन्ब लुचिब सेल थूम की तोान तोब हिरम क्या तेंबा पीने खनखी सेल थूम मंत्रालय फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हेन खुदचा पीना तेंबा पीने वफम यानखी प्रधानमंत्री किसान मंडप योजना पी एम के एम वाई चही तरह मपुंग फारे स्कीम इंग लिसमापनबनी स्कीम की लौमी लाख कुनमंगा रोम रजिस्टर तौर हरियाणा बिहार स्कीम अगर खाई रजिस्ट्रेशन तौर राज्य स्कीम अखाद लौमी सेल की तेंबांग पीरी बिहार इसिंग इचाव की फिवम होगी स्टेट डिजास्टर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की मतुंग इना राज्य की जिला तरह मरी की ब्लॉक मरफु मंगादा मियोय लाख निफु मरी हेन इचाव की अवाब मायोकनरी आकाशवाणी पाउमीन है इचाव सोलब मफम कम्युनिटी किचन लिसिंग निफुद चा थब पोलम पीबा तेंबांगी पीबी थब चथरी हि लिसिंग चमापन निफु निथोय मथौ तौरी इचाव असिद अवाब ताराब मियाम तेंबांग पीनबगिदम मेडिकल कैंप चनीपन तरह निथोय हांगदुना थमली वाटर रिसोर्स विभाग ने हाय हौकिब पुंग कुमरी असिदा मरु ओइब टुरेल सिंग इमाय तमना तमना हंथरकली चाइना की मोगी चथरीब जूनियर एशिया कप हॉकी की नुपी की गसी भारत का साउथ कोरिया का सेमी फाइनल थेनरगनी गरंग सानकिब अहानब सेमी फाइनल दा भारत की नुपा की जूनियर हॉकी टीम ने मलेशिया बु पांजल अहम माइथिब पीदना फाइनल चंखरे फोब पाउचे मरुब पागीदम होजी खाइडम गीचंद्र लेरे गीचंद्र
2: फाग चली मुख्यमंत्री यूनाम खेमचा यू एस एम्बेसेडर उन्खेब

थिंगबाईजम बिपिन चंद्रन सकपा मतम शेमा तामिनरे आकाशवाणी इम्फाल हौजिक पुंफम सदुक चेरी नहारोल की खोंजेल।

0: भारत की अहानबा बेफ्टा अवार्ड्स फंगलदुना मालेमदा मणिपुर की मिंगचेट पुरकपं गमखरवा फीचर फिल्म बूम एमएसएफडीएस की पैलेस ऑडिटोरियम दा सितंबर की तांग 13 नोमाइजिंग नुमित की नुंगथिलपुंग अहुम खाय ताब मतमदा उच्चगदौरी लायंस क्लब ऑफ इम्फाल लेमरोल नशिनबा फंड रेजिंग इवेंट असिदा बूम फिल्म येंगबी हौरो डोनेशन कूपन सिंग एमएसएफडीएस की काउंटर दा फंगबिगनी फीचर फिल्म बूम
1: Adom na pungpa masida, good morning Manipur ki thoram da, tongan-tongan ba film ma di matami say sing, matang-matang tabiri. Matang asidi noba film da gisaya mamuk lantuk chage, saizagli ba razu nung, sayring ba shure sidang, sayrang ba ogit. Isaya sigida mag SMS tabirakli ba sing na, singza may dagi langon ba angom amadi Jessica yumnam, kanbirak pa isay lantuk chari mayam puna taminarasi.

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आइकोगी थोरम गुड मॉर्निंग मणिपुर सिबु तोंगान तोंगान बा मीडियम सिंग द ताबिरगा SMS के खुथांग दा व्हाट्सएप मेसेंजर के खुथांग दा मदी YouTube लाइव स्ट्रीमिंग द लेबिरी बा मरुप सिंग नसु तोंगान तोंगान बा कमेंट सिंग पिबिरे इ लोइनाना नुंगाइरी बा मना आइकोगी YouTube लाइव स्ट्रीमिंग द लेबिरी बा मरुप सिंग ना खुदोल दमजरी बा इसे सिगा जाना बा वहाय वता मया मम्मा अवाय खुम तोंना दना फोंदोक पिबा सिमक्सु पाजा बा दसो दुकी मतिक नुंगाइजै kana kana na maruoi na live streaming da active hoina library haiba dongtang pathok charake nepram prem kumar kanan bala kongrai latpam kayen pa paibam manglemba salam bimota gandhi warepam janjan ning thauja ngangbam renabir paunam borni dhananjoy kangabam inau macha sharma daya jaya robita mayengbam laishram susila suman laishram na chingba marukayana ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯂꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯕ ꯆꯦꯠꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯃꯛ ꯆꯪꯂꯛꯄꯗ ꯆꯤꯔꯣꯝ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯑꯣꯃꯤꯇꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯐꯖꯔꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯃꯔꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯂꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯊꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ SMS ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯒ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯁꯦꯠꯇ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯖꯦꯛꯁꯟꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ SMS ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯕꯨ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯗꯒꯤ ꯁꯔꯠꯅꯤ ꯁꯔꯠꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯅꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯛꯄꯅꯤ ꯁꯩꯔꯤꯡꯕ ꯇꯈꯦꯂꯝꯕꯝ ꯗꯣꯂꯦꯟ

भारत की अहानबा बेफ्टा अवार्ड्स फंगलेदुना मालेमदा मणिपुर की मिंगचेत पुरकपंगम खरवा फीचर फिल्म बूम MSFDS की पैलेस ऑडिटोरियम दा सितंबर की तांग 13 नोमाइजिंग नुमित की नुंगथिलपुंग अहुम खाय ताब मतम दा उच्चगदौरी लायंस क्लब ऑफ इम्फाल लेमरोल नशिनबा फंड रेजिंग इवेंट असिदा बूम फिल्म येंगबी हौरो डोनेशन कूपन सिंह MSFDS की काउंटर दा फंगबिगनी फीचर फिल्म

माखल मथिलगी थोरम कयाना लैचलोइजदना सेमजरीबा आकाशवाणी इम्फालगी एफएम संगाई चैनल ने हौजिगा मुपुंफम मसिदा फिल्म अमगी सैदा पुजरगली मतांग चाबदा हायरगे फिल्म मसिगी सैसिंग मथंग मथंग ओइना मतांग चाबदा हायरगे फिल्म मसिदगी आहान बैसै लानथोकचेरी सैसलीबसिंग दिनेशमदि पुष्पारानी सैरिंगबा राजेनियंगकुपम सैरांगबा सोरी सेंजम

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: Nikita Gandhi amadi Arijit Singh ani puna sakmina baise si tahan jaki baga loinana tangka gasigi oinadi git chinglan thokchaba matang asi dalu sinjare adomna thoram tabiribasi Akashvani Imphal gi FM Sangai channel dagini
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: सिंखई
1: हां
0: यौराबरा
1: पबु
0: ला ला ला सों
1: ऑन लक्सरी
0: पर रिजल फंगे को
1: ओ पुजरी पों
0: करे करे
1: ओ सोम द सि सिमस पों
0: ओ आई आई एंगे करे आई आईना आईना सिंग नहीं ने
1: ओ पों हाइबिरिस बो
0: नुपी में साधु के मुंह में नंगे फिर हम दे कम दावे
1: का पवन करी ओ
0: हाँ सुन
1: मुंह की दी इनकम दी पूरा निल नहीं पवन अद मामा दुसु लुखरा भी नहीं का करी
0: हाँ देर के पवन लुखरा भी नहीं आया बाप दो दिए दो दिए मुंह के मापा दो दिए कम दाव ने ले की दबनो ना मकोई की वारी वाकों का दी खंग ब्राइड
1: पवन इन्हें ताब द कनोर माने ब्लड कैंसर ना नारगे लेखी दबनी आई
0: ब्लड कैंसर
1: होय
0: सोई दन होय गनी सोई दन होय गनी
1: ओ पवन कई हा हाईवी हाईवी रिश्वो पवन
0: मसी की लाइना से पारी पुरी दके मरी सनगन बा लोंगनगन बा लाइना ने
1: अजूदी अजूदी पवन निरुगी लाइन लाइना सिशु
0: सिंखई अखोई मियोई बसे सिवनाई नंग पाबुंग होय अखोई अहल होय रे दना थमक तकी पोथा रे दना एसु सही हुंफु मंगा ददी थवक तकी पोथा रनी अखोई कया कुइ ने हिंखिनी हाइब गम दे अहल होय रागा कना नाय खोई बु सेनबिनी निंजव कया ग लोइना ना सेम ग चरकपा दुगुंबा इसाई सुदुना मामा मपा मपु मबेल गे ममांग थाना लाइरम लेन पांगकी बसु याउइने अदुना मसीदी पुंसीनी ताइबंग पानी खंडोक पन्नतना करी सुतों निगाई लेते
1: अदुदी
0: इबे मदो माशु माशु नारे कन्फर्म तो रे सिंखे
1: हाय दुदी ब्लड कैंसर
0: पाकत कन सिंखे
1: हरी सुबो
0: कम डाउन कम डाउन सिंखे कम डाउन
1: निरुबो
0: रिलैक्स
1: नती बाबू बाबू शिक कंफर्म तो रहा हूँ बाबू
0: हम तो इन तो
1: शेम रहा बाबू हाई बीरिस
0: आई के नंग इन तो फुम हम तो इन इन फुम मुनाताओ इपावा है के
1: निरु
0: कैसे पाकत करने को
1: निरु
0: से आई ना हाई बना ते टेस्ट की रिजल्ट से ना हाई बनी अदुगा सिंखई मागिसी स्टेज सो थर्ड योरे
1: थर्ड स्टेज निरु
0: तब थो तब थो तब थो तब थो से नपुंग खा थो करी गिनो नंग ना अधुक याम ने इमोशनल ओए रिदु तो तब थो ओए बा
1: अधु दी पबुंग मा
0: ओए ओए नंग ना चिंग नेरी बदो अचुम बने ताओ इपावारी लिगे लाइना सिदी सेल याम चंग बल लाइना ने अधु का सेल याम ना चंग लबसु मा की लाइफ टाइम दी अकक ना बने याम तेल
1: बाबू
0: अखोई इथक्त अगुबा तमथीब लेना कया कया लादारतना मोब कया की पुंसी से पिकम नहनख्रबने कयामना योसिनगदबगी पुंसी तेलनगदबगी गायदुना लेरिबने मोब कनासु सिनाइदब नत्ते पुनमक खरा मना याम तमथी वाइल ओय लायंग लायंग ना मखोइना असुम खुदुम चनसि लक्तुना मियोय बबु मोंफम द पुबिखि असिगुम लायना सिंग सिगि मनुंग दा ब्लड कैंसर हाइरि बसेसु अमन
1: ओ
0: नंग ना हाइबा मपालम द चतपा हाइबदो मपालम गे डाक्टर लायनते एकोय गुम मि सकोट पर स्टेट ओय मना खुजु खलाय खरा मरांग काइनो फंगी लै अदुनी लायंग दि चप माने ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯃꯄꯥꯜꯂꯝꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯤꯡꯂꯒ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯨꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯏꯕꯦꯝꯃꯗꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦꯅꯦ
1: ꯄꯥꯕꯨꯡ
0: ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯏꯒꯦ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯣ
1: ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯗꯨ
0: ꯈꯪꯉꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡ ꯆꯠꯊꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯣ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯌꯧꯔꯣ ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯏꯄꯥꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯏꯁꯦ ꯆꯨꯝꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯨꯀꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯜꯂꯨ ꯌꯧꯔꯣ ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯒꯅꯨꯀꯣ

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून लेडीज की थौरम ने कना ओइ बिरबनो मिंगलेफम खंजु
1: के
0: ताबिब्रा
1: ओ ताजे ये
0: होय होय मिंगलेफम हाई बियो कना ओइ बिरबनो गुड आफ्टरनून लेडीज की थौरम ने
1: मैम आई जी से आई जी मिंगना लाइना
0: कना ओइ बिरबनो मिंगलेफम खंजु के हाई बियो ताजरी यामय एक से न ताजरी
1: ताबिब्रा
0: ताजरी ताजरी कना ओइ बिरबनो
1: आई लिंग ना लाइमा
0: लाइमा करी वफम फोंदो पिकनी हाई बियो
1: कमिदो कमिदो
0: हेलो
1: मैं भाई सीता बदे याम ने नुमाई जब तो आदो हाई जने ने देखो इरे नसी ना हान बने हमी थी आई नो वाला पसी भी कोई रे
0: Good afternoon, ladies. Thorum gi oina ko. Ato ba to pa karam karam ba phone in program daga di saru gya bikra bage.
1: Oh, kai subu de hai ningai ko di lai kya do ngasi. Aha boi na phang jaba si de yam na harai jaba do.
0: Hoi hoi. Yam ngai zai phone to birak pa thorum saru gya birak pa ko. Ma khata na adumak saru gya birak ko. Iko gi thamjuri ba thorum ke ya sibu ma pung phan biu hai ba wafa masiga loi dana. Isai ma khata na mung tamina si.
1: Thank you.

0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज की थोरम ने कनाओ बिरबनो।
1: हेलो
0: हेलो ताबी ब्रा हेलो

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून कनावे बीरा
1: हेलो
0: हेलो ताबीब्रा
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून कनावे बीरा बनो ताजरी
1: आई गोसबाई दगी थगाम
0: नहीं होय नहीं नहीं हैबी बनी गो
1: नहीं
0: नहीं होय होय नहीं नहीं करम बवा फम पुखत पिगनी फोंग दुक पियो
1: आई कयुम ता थंजे आकोई खुनगे आ तोती छे आ गोसबाई तोती छे मतंग हा ता मग ता दर बा इथिन जे हम जे इछिन जे प्रॉब्लम जाम नुआ त्रवाई ता रे
0: होय
1: छे मरी न ब
0: ยามนุงไอเซวาฟมซุปุคัดปิเรเอลอยนะไอควยกิทัมจริบะทอรัมซิงอะตุกิมติกนุงไอเซตาบีฟงดุกปิรักปะดาไอควยซูอะตุกิมติกฮาราวตะยามบะฟงดุกจริกอโกลตุกปิรักปะกิตะมักตะทาเกจเกลอยนะไอเซมะคุดอลทัมจริกเกมะยามปุนะตามินะซิทาเกจริ Kudol Damjariba isay, dharmagi mingda imagi damag film asidagi. Pusperani gi naitum khonjilda herozit nauroibamna sayringba sayrangbana tomba thangcham.

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून कनाओ इबीरा बनो
1: हेलो
0: तबीब्रा
1: हेलो
0: हाय इबेमल करी वाफ़म पुकार पिकने हाय बियो
1: मैडम आई ऐसे दोपहरी लाइज दे अतुका अच्छी कहने तो संगाई से ने अंदर कंगला से ने अतुम लोइन ताज़री मैडम दा
0: Yamnungaize, Quiggy Tom Jeriba, Akashwani, Falgi, Taurum Singbu, Tawai Hakjang, Yang, Natchen, Lenimaki, Tai, Hyber of Mercy, Tambirak Bada, I Haki Maki, the Gisu Tugget Pofongo Jacob. Yamnungaije, Aruba Collar, Su Ibire Somna, Isai Makatana, Tamina Ganga Sigi Toramasi, Lushi Minisiko. Tugget Jerry.

दोस्तों, गीत को सुनने के बाद आपने पहचान लिया होगा कि किस फिल्म का गीत आपको आज सुनवाने जा रहे हैं। जी हाँ, संगम फिल्म का गीत था। आरके फिल्म्स के बैनर तले बनी ये पहली रंगीन फिल्म थी। इस फिल्म में बॉलीवुड के इतिहास के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर न केवल इसमें अभिनय कर रहे थे, बल्कि इसके निर्माता और निर्देशक भी थे। फिल्म की नायिका में लोकप्रिय विजयंती माला थी और मुख्य जोड़ी के साथ राजेंद्र कुमार भी थे। आइए सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, संगम फिल्म के गीतों में अपनी आवाज़ें दी है लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कुमार कपूर ने। शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था और गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने।

दोस्तों लगभग 4 घंटे की फिल्म होने के कारण उस समय तक की सबसे लंबी हिंदी फिल्म थी संगम, जिसके कारण इसे सिनेमा घरों में सामान्य एक अंतराल के बजाय 2 अंतराल के साथ दिखाया गया था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह पहली हिंदी फिल्म थी जिसकी शूटिंग यूरोप के कई देशों में बड़े पैमाने पर की गई थी। आइए सुनते हैं अगला गीत।

इस गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ट्यून करते रहें संगाई चैनल, साथ ही स्वस्थ और सुरक्षित भी रहें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

मखल मथिल की थोरम कया संदुक तुने तहन जुरी बसी आकाशवाणी फलगी एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजिग अमुक पुंफम असीद पुदुने लागचरी तोंगान तोंगान बा मणिपुरी फिल्म मिसिंग सिंह खुदुल की अहान बद लखचरी अयेक पलाई फिल्म असीदगी पुष्परानी की नाइटुम खोंजल दा आर के मेमचाना सैरेंग बा सैरंग बना ओके नमाचुम खुदुल तुम जरी

0: मखल मथिल की थोरम कया संदुक्तुने ताहंजरी बासी आकाश रनी फलगी एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजिग अमुक ताबिरसी खुंगंग नोंगमा थोरम मसिद कुंबी खुंगंगी मपाउ अनिसुब सरुक थोरम पुथोपद तेंगमंग बसिंग दी युमना मेमा लोयतोंगबम रंजना एमएम सनायाई इरेंगबम अजित कुमार मैते थोरम पुथोपी नोंथोमम रोमा
1: हौजिक लाथों से खुंगंग नों थौरम से तरा तरह सूब तंक तबीरसी कुंबी खुंगंग मपाव थौरम से अरब सरुक थौरम पुथोपी नौथोबम रोमा पुथोपद तेंबांग युमनाम मेमा लोथोंबम रंजना एम एम सनायाई इरेंगबम अजित कुमार मैते लमदम मतेंग पांग कथोक याद्रब पोटसक अवा अना तारब कना लैजद्रब खंग हैजद्रब कया की मतेंग पांगीब मियोयबगी अथोयब मगुन्नी हिरम सिदा लीगल एड क्लिनिक कुंबी कॉलेज कैंपस की को ऑर्डिनेटर ओइबिरिबी खांगेंबम प्रमोद कुमारी ना थंबिरक पवाफम सिंह तामिनेसी
2: लीगल एड क्लिनिक से करंब मतम दगी होदोक पिरखी
3: मसी 2016 गी 30 अगस्त ता इनोग्रेल तौखी अदो तौबदी एखोय गी कुंबी कॉलेज गी ओजा सिंग कमिटी सिंग ओजा मरो ओइबा सिंग खरा यावरी अदो कमिटी अदो अते अते कुंबी गी मसक नारबा अहल सिंग ने पथबिरखी बने द मतम दुदा ए सामक्सी कैंत खंगदे सि मरम द करी नोय जे दम खोयना खोय जे सेलेक्ट तौबिरगा कम्युनिटी मरक तगी अदो सोशल वर्कर मरक तगी हायना थौ पुरम ग तोखी बारी दया तौ मरक तगी अदो कॉलेज गी ओजा सिंग गी मरक तगी हाइना सुमायद्रोग हापीखिबद आइजु हेक हौबदगी अदम याउजरखिबनि मतंदुदरि अखै ओजा कुंबी कॉलेज की पॉलिटिकल साइंस की हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओइबा कायखुमनाजरिबा एचोमबम ओजा गोपालना कोऑर्डिनेटर ओइरगा हारिबा थाबगसि याम फजना मुखोंबरि चुमना बांथोकतना लाखिबनि अदुङासि भावदा खैनामु मखा सुम समजजरखबनि
2: हारिबा क्लिनिक असिना हौजि फावबगी लाखलिब लमबिसदैदा करि करम थाबगसिं बांथोक पिख्रबगी हाइबद ख्र थंबि
3: क्लिनिक सिना हेक हौरपदगी ngasi फावबदा खैगि केस सहुंग सुरे खैदा लाइजे लापसी के मनुंग दा कोई ना केस चनी के मौद्राइन पान मुक्ति कोई माय पान पांग थोखरे हाय बसिंग दुगी

0: ꯃꯨ ꯁꯤ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯏꯃꯥ ꯍꯣꯏꯒ ꯉꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯍꯣꯏꯅ ꯍꯩꯔꯕꯁꯨ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯄꯣꯊꯥꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯥꯡꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯍꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯗ ꯌꯦꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
2: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ 17 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯁꯤꯡ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯃꯦꯝꯃ ꯂꯣꯏꯇꯣꯡꯕꯝ ꯔꯟꯖꯅꯥ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯝ ꯁꯅꯥꯌꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯦꯡꯕꯝ ꯑꯖꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯁꯤꯡꯊꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯕꯤꯅꯣꯖꯤꯠ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯉꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ
3: ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯃꯦꯃ ꯂꯣꯏꯇꯣꯡꯕꯝ ꯔꯟꯖꯅ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯝ ꯁꯅꯥꯌꯥꯏ ꯏꯔꯦꯡꯕꯝ ꯑꯖꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ
4: दस लाख की लॉटरी मुझे वाओ
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: आकाशवाणी इम्फाल हौजिकता भी रसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंगबांग लोइनना संदुक चबथौरम रेडियो क्लास की प्राइस विनर

0: ताबिरें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंबांग लुइनना संदोकचब धोरम रेडियो क्लास की प्राइस विनर सिंह
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: इरमदम इरे चागिनी खन्ना नहा अहन खाइदना मतम मतम गी थोकना रखबा मियोय कया ngasi ekhuina thingari
4: makal makal gi election lakpada anuba ariba candidate sing changyeng gi damak tholuktuna leibak sembada achuba saru gyana bohonari
3: micham ekhoi mayam nasu makhoi bukana no kari thabak tokhrabage aduga kari kari tawrakani haibasidi khangningli
4: lakaduri ba manipur gi election da candidate ubiningli ba singi wakalun phongdok chanaba amadi मियाम द मसक तक्चनबा मिनिट अहुम दगी मंगा फौवा रेडियो गी खुथांग द संदोकनबा मतम थमजरी
3: स्पोंसर तौदुन संदोक चगदबा थौरम सिगिदमक आकाशवाणी इंफाल की कमर्शियल सेक्शन दा तानबियु
5: मरई बाक मरमदम नुंगसी दब मियोय सिंग इरै लैरम लोय मिखल मतम लाकपदा ऐन फै ऐखोइन हेली ngangna saknaba launaba ngaktani
6: micham praja aikhoi mayam su leibak sem gadaba afaba thabak tawrak gadaba candidate pamnai phangnabra
5: micham praja agent sing amadi candidate sing the base toba lila tara sandoknana bagi aiba sing dagi script kauchari
6: AIR code soktaba amadi anauba awonba purakpa yaba script sing scrutiny tawjaraga october lesingani kuntaruktagi thangna thangnana नोंमाइजिंग तरामकता लीलासिंग संदोकचगनी
5: सेप्टेम्बर कुंथ्रा फाउबदा पुंग अम सनगदब स्क्रिप्टसिंग आकाशवाणी इम्फाल की ड्रामा सेक्शन दा योहन बिरहु
0: आकाशवाणी इम्फाल थरुंग की मखा चथजरक पोइना हौजिग मुक्ताबिरसी लाइश्रम मेमगी खोंजेलदा थौनाउजम श्यामोन सेरिंगबा मतमिशेमा

0: मखल मथिल की थरों कया संदोक तुने ता हंजरी बासी आकाशवाणी फलगी एफएम संगाई चैनल दिगिनी हौजे मखाताबा नुंगाइरब थरों कया गि दमकता वाइखोम पूर्णिमा दा खुचि नजरी
1: थागचरी युरेका अदोम ना थौरम ताबिरी बासी आकाशवाणी फलगी संगाई चैनल दिगिनी ताबिरी बपुम नमकपु तराम दो उक्चरी खुरुमजरी थौरम मखा सथजरक पोइना हौजिक लानथोकचरी ngai kho ta khisi

हौजी ताबीरे सुमांग लीला लोन नहाइगे अनिशुभ सरुक लीला सानबी नहारो खोंथांग आर्टिस्ट एसोसिएशन की लीला कांगबू अदोमना थौरम ताबीरी बासी आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चैनल दगिनी।

थारम लंग तोक्तुने तहन जरीबा सी आकाशवाणी इम्फाल की सांगाई चैनल दगिनी चैनल असी द थम जरीबा गसी नुमिदांग अमदी हयेंगी थारम सिंग समलप ननिंग सिंग जरी मिकु खरा की मतुंग द लांथोक सगनी नहारुल की खोंजेल पुंग तरुक मिनिट निफु खुंगंग की थारम द तहन जगनी थांगजम नुंसी देवी ना सकप खोंगजोम पर्ब अमदी फर्स्ट एड की मरु ओइबा हायरी बहिरम असी द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मेंबर डॉक्टर बंकिम चंद्र थोक्सोमगा एम एम सनायाईगा उनदुना साबा वारी वताई थौरम पुथोकपा नोंथोमबम रोमा परिंग नाइना संदोकचरीबा रेडियो लीला सुम लिब्रा एगी खोंगथांग से तरे सुब तांक लानथोक सगनी नुमिदांगपुंग तरेत मिनिट निफुमंगा लीला पुथोकपद तेंगबांगबा थोकपम सुभाष चंद्र अमदी असे मंगलेंगबा लीला पुथोकपा माइबम ईशा कांता लीला इबा खुंदोंगबम जोयमती नुमिदांग पुंग निपाल मिनिट तरा मंगा गुड इवनिंग मणिपुर थौरमदा थमजरी अदोमना एसएमएस अमदी व्हाट्सएप मेसेज की खुथांग दखन बिरकपा ताबिनिंग बे इसै सिंग नाइट मेलेडीज लांथोक सगनी नुमिदांग पुंग मापल मिनिट मंगा थौरम लांथोक पीगदबा कचिंग तबम रितेश शर्मा नुमिदांग पुंग तरा तारक मतमदा गीत लांथोक चरब मतुंग सांगाई चैनल की थौरम सिंग नसी की ओइना संदुक चब लुइसिन जगनी हयेंग सेप्टेम्बर की तांग तरा हुमदोई लांगबन गिनीनी पानबा नोमाइजिंग नुमित की अयुक पुंग मंगा मखाई तारक मतमदा सांगाई चैनल की थौरम सिंग संदुक चब हौजगनी पुंग मंगा मिनिट कुंथ्रा तरेट लांथोक जगनी याकाइरोल हयेंग याकाइरोल दा लैम पोपम याइम संग ने सक पपेना संगीत मला दगी इमाले बाकु साइ थाजब इसै याइखोम गंगा देवी खुमुकसम नोरेन सिंग अमदी माइरिमबम निलबती देवी ने सक पा लाइसोल इसै सिंग मथंग मथंग ताब फंगबिगनी सी दहिदाक थमजरी अयुक पुंग तरुक मिनिट तरा पुंग तरुक मिनिट तरा मंगा अमदी तरुक मिनिट कुन मंगा लांथोक सगनी लाइसोल इसै अमदी मतम इसै सिंग मथंग मथंग ओइना खोंजल ना चोम थौरमदा थमजरी मणिपुरी फिल्म इसै सिंग अयुक पुंग तरेट मिनिट निफु इंग्राजी वारी वताईदा तहन जगनी स्पिरिचुअलिटी की मतांगदा प्रोफेसर सलाम अनिल गा उनदुना साबा वारी वताईगी अनिसुब सरुप उनबीगदबा कक्सिंग तबम रितेश शर्मा नाहरोल की खोंजल थमजरी अयुक पुंग निपाल मिनिट निफुनीथोय गुड मॉर्निंग मणिपुर थौरमदा तहन जगनी अदोम एस एम एस अमदी व्हाट्सएप मेसेज की खुथांग दखन बिरकपा ताबिनिंग बे इसै सिंग फिल्म अमगी इसै नत्रग सैसक अमगी इसै लांथोक सगनी पुंग मापल मखाई पुंग तरा मिनिट अनी फंगबिगनी गीत मथंग मथंग ओइना

0: ꯃ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯈꯤꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯣꯜ ꯀꯦꯁꯇꯨ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯀꯦꯁꯇꯣ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯗꯥꯎꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯟꯖꯗꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯀꯣꯟ ꯇꯧꯗꯧꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯗꯥꯎꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯖꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ
1: ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯅꯤꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯟꯖꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯃ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ?
0: ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯁꯤ ꯁꯨꯛ ꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯌꯣꯟꯗ ꯄꯨꯅꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯇꯅ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯇꯅ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯎꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯦ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯗ ꯄꯤꯂꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯅꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯨꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯛꯄ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯁ ꯕꯨꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯁꯦꯜꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯂꯩꯕ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯁꯦ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯁꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯤꯅꯤꯇꯔꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁ ꯑꯦꯟ ꯊꯣꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯇꯝꯕꯤꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯝꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯐ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯂꯣꯁꯤꯡ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯦ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯧꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯆꯪꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯥꯔꯊꯅꯤꯇꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯩꯔ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯇꯦꯜꯂꯞꯅ
1: ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯑꯦꯛ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯁꯨꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯗꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯍꯦꯜꯃꯦꯠ ꯎꯞꯇꯕ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ?
0: ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯗꯤꯕ ꯉꯥꯡ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯔ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯍꯦꯜꯃꯦꯠ ꯎꯞꯇꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯇ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯗꯅ ꯍꯦꯜꯃꯦꯠꯁꯨ ꯎꯞꯇꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯊꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯒꯥꯔꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯒ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯏꯕꯗꯣ ꯂꯨꯄꯥ 1,000,000 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯐꯥꯏꯟ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯊꯣꯝꯃꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯔ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯀ꯭ꯂꯦꯝꯁ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜꯗ ꯀꯦꯁ ꯊꯥꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯐꯪꯉꯛꯑꯅꯤ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯑꯗꯔ ꯍꯦꯟ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯥꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯕ ꯁꯣꯏꯕ ꯉꯥꯝꯕ ꯇꯧꯕꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯕꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯂꯨꯄꯥ 100,000 ꯄꯤꯔꯣ 50,000 ꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩ ꯇꯥꯔꯣ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯣꯅꯦ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁꯗꯨꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯇꯥꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯅ ꯉꯥꯏ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯊꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯝꯅꯤ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜꯁ ꯑꯦꯛꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯊꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯝꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯧꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯍꯦꯜꯃꯦꯠ ꯎꯞꯇꯦ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯊꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯍꯦꯚꯤ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯃꯣꯛ ꯏꯃꯤꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯊꯤꯒꯗꯕ ꯈꯣꯠꯀꯗꯕ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕꯗ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯆꯂꯥꯟ ꯀꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯔꯒ ꯃꯇꯦꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯆꯨꯝꯗꯕ 파르 텐 바간다 수이 아이네 아데데 앙앙데 가이 푸토 부르 삐르로야 바코 마지 푸토 고딩글 빨리 신공하고 마티가라디 아무 티브도고 마도 마탕 티브레 헹글라 가데네 아도 이디 도그로 오래 바코 아는 레박시라 좀 뭐 가르 도게 따라가디 임플리멘 도부시쇼 네옴 좀나 도부더카레 하이나 에드 마이나 탐자
1: 아이코기 토칸닝다 바 라이벅티바 토독싱 아시 토크레 하이바 마퉁다 세일 통기 코동 짜다 바낭라바 미오이 아마나 가다이 가다이데기 마팅 하이바디 리겔 에드 로바 야가니 아두가 가람 가람 바 미오이 싱나 렘나 코동 짜바시 팡바 야바게 하이바시게 마탕다수 수가이나 탐비라 모자
0: 탐자게 인스티튜트리 페레투기 마농다 마 인베스티게이션 도고 페레람마가 사이기 60 days 90 days 180 days 레게드르비도 마두이두 마농다다 인베스티게 ding authority do na sar sit thagalak patara ga so judge do na hangane banange ukilai bra laita bra laite hair ga di ukilai jadra ga di sai ki aina na sai haje ki ba custody de bulai ra ba police custody or ga judicial custody or ga custody de lai ba midu gi rena legal defense counsel na adum case to le pi bai aduda sigi free gi ukil phang ba yarib si kana kana noy kanda police custody de lai ra ba judicial custody de lai ra ba trial chathari ba hai ba miwe kanglup se magi ukil leitra di to buyare aduga si sing sin nataba nupi oiraba angang oiraba soinai ba oiraba hai sai bi infected oiraba component class samada mayok narba miyo victim oiraba national calamity samada mayok naba mi oiraba senior citizen oiraba scheduled caste and scheduled tribe oiraba adu matakta masagi income chahi amada general dana lupa lakh ahum gi makha da income leba kanglu khudi makse lem na hai gi tebang phangani aba hai ba sigi matungina kari gumba custody ये थोक रखा ट्रायल में उन गदबो ओए रखा दे मी मसाद ना पानुपी ओए रखा दे तुम चलेगा माय के फॉर्म में था जी लगा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लेकर सबसे अच्छा थरी जा माय के उकिल्लो तुम हैप्पी रहने बुको नोपा ओए का ना माय इनकम सर्वे तो जनरल ओए रखा दे इनकम सर्वे तो पूरा नहीं लाऊंगी मखा दो अजो माय केस नंबर टू के का तो पीर रखा सम था नहीं एफिडेविट में तो नहीं आदा अजो फॉर्म तो था जी लगा उकिन हबा कने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओए रखा ना माय के सर्टिफिकेट शेड्यूल कास्ट ट्राइब के सर्वे तो पुथो पीर नहीं को अजो अदम आई ना फ्री लीगल एक्स इशु फंगने अब हाई रिस्क क्रिमिनल खक्की वाने अजो सिविल लसु पेनल वेयर हैंड लाइक रिटेनर लॉयर ट्रकास पिछले डिस्ट्रिक्ट लेवल के अगर मोहन अदम सिविल की सोच माए फंगने मान लनाई उकिल पैसा पुथोक्चर करने पंगम जब और लनाई रूम नेक्चर रही को उकिल सिंह ताना बा उकिल सिंह मागे डिफेंस तो माने तौकने
1: yam nungai jare oza ozana ngasi chillaba matam kaya kai thupi duna naharol gi khonjel gi thauram asibu mapung phan mi bagi da magta ozabu thagar phongdok jari
0: aini su akaspani falbu hana na thagat jari
1: haujik tabi kri naha sing da toina thokan ba offensing da gi kanjana ba maru oiba lo sing hairiba hiram asida imphal west district ki chief legal aid defense counsel oina thaupu biri ba advocate pukhrambam premchand singa unaduna wari saba unaduna wari sana jakhibi laishram thoi debi thauram asi tahan jakhiba galoina na ngasi gi di naharol gi khonjel thauram sandok chaba matang asida loishinjari thauram tabiram liba marup singbu amukahna khurumjari

भारत की अहान बा बेफ्टा अवार्ड्स फंगलेदुना मालेमदा मणिपुर की मिंगचेट पुरकपंगम खरवा फीचर फिल्म बूम MSFDS की पैलेस ऑडिटोरियम दा सितंबर की तांग 13 नोमाइजिंग नुमित की नुंगथिलपुंग अहुम खाय ताब मतम दा उच्चगदौरी लायंस क्लब ऑफ इम्फाल लेमरोल नशिनबा फंड रेजिंग इवेंट असिदा बूम फिल्म यंग बिहौरो डोनेशन कूपन सिंह MSFDS की काउंटर दा फंगबिगनी फीचर

वो भी लाइव सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

दस बजकर 31 मिनट हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम हर सिंगार आपके साथ मैं विकास।

1959 का ये दौर था और उस दौर का ये गीत पहुंचा आप तक. फिल्म का नाम था जालसाज और पर्दे पर थी माला सिन्हा और साथ में उनके नजर आ रहे थे किशोर कुमार. गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और एन दत्ता का इसमें संगीत रहा. गीत को गुनगुनाते गुनगुनाते पहले तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन अभी जब आप तक मैंने ये गीत पहुंचाया तो ना चाहते हुए भी मेरा जहन इस गीत के साथ एक और गीत को गुनगुनाने लगा और वो गीत था ठंडी हवाएं लहराती आएं. शायद बहुत से लोगों को कुछ कुछ ऐसा ही एहसास हुआ होगा. बहरहाल संगीत कई दफ़ा इस तरह के खूबसूरत से हादसे हमारे साथ करता रहता है. प्रोग्राम का अगला गीत 1959 का ही है और फिल्म का नाम है बरखा. जी ये गीत तो मुझे लगता है कि जेन जी भी जानते होंगे, क्योंकि आज जब रील्स का दौर चल पड़ा है तो कुछ गीत उस पुराने से खूबसूरत से संदूक से हम और आप अक्सर नए रूप में सुनते और देखते हैं. प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार, आपके साथ मैं विकास.

लता जी की आवाज थी और संगीत था चित्रगुप्त साहब का और गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म का नाम था बरखा। अगला जो गीत आप तक पहुंचने वाला है और देखिए कोइंसिडेंस कि अगला गीत भी राजेंद्र कृष्ण साहब का ही और अचानक से मैंने जब इस गीत के क्रेडिट्स देखे तो पता चला कि अच्छा ये गीत भी अचानक से राजेंद्र कृष्ण साहब का ही निकल पड़ा। राजेंद्र कृष्ण साहब के गीत मैंने देखा है कि हम में से बहुत से लोग सुनते हैं पसंद करते हैं लेकिन जब बात क्रेडिट्स की आती है इन नामों को याद रखने की आती है हम उन नामों को ना भूल जाते हैं। सच कहूँ तो सही नहीं करते लेकिन ठीक है हर कोई उतना दीवाना शायद नहीं होता वो शायद संगीत को सिर्फ सुनना पसंद करता है। फिल्म का नाम है आंगन और प्यारा सा गीत है और इस गीत को गाया है आशा जी ने। प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार और हर सिंगार में मैं आपके साथ विकास।

फिल्म का नाम था आंगन और रोशन साहब का संगीत था इस फिल्म में। एक नाम जो मैं जोड़ना भूल गया था इस गायिका का नाम, और उनका नाम है गीता दत्त, यानी कि आशा जी।

के साथ एक और जो आवाज हम तक पहुंची थी उन गायिका का नाम। इस गीत को सुनते हुए अगला जो गीत मेरे जहन में अचानक से चलने लगा वो था फिल्म शहीद का। जानते हैं कौन सा वाला गीत? आप तक पहुंचाऊंगा ना तो शायद आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ कुछ तो मिलता जुलता साउंड कर रहा है।

कह सकते हैं कि ये गीत कुछ कुछ लोक संगीत की मिट्टी की खुशबू लेकर भी हम तक पहुंचते हैं और इन्हीं गीतों की ये बहुत खूबसूरत सी बात है कि सुनते सुनते हमें कई तरह के रंग देखने को मिलते हैं। अगला जो गीत है वो भी एक लोक गीत की रंग या उसकी छाप लिए हुए है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

10:56 हो चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार। प्रोग्राम का आखिरी गीत मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। ये फिल्म आई थी 1959 में, लेकिन इसका तेलुगु वर्जन 1955 में रिलीज हुआ और फिल्म का नाम था जया सिम्हा, और जो इसका हिंदी वर्जन था उस फिल्म का नाम रखा गया जय सिंह। वहीदा रहमान और एन टी रामाराव पर्दे पर नजर आते हैं। प्रेम धवन का इस फिल्म में गीत रहे और रमेश नायडू साहब का संगीत।

उषा मंगेशकर की आवाज है और थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ यानी FM गोल्ड के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन में बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll be taking your calls on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn poochne ke liye aap dial kijiye 2331-4444, 2331-0481 aur 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: प्राची, नमस्कार, और राजेश,
0: आपको भी वेलकम टू यू।
2: गुड इवनिंग राजेश।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए जानें सुर्खियां।
0: ब्रिक्स नेशंस अडॉप्ट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन On the first day of BRICS Summit 2026, leaders advocate for multilateral approach that respects diverse viewpoints and positions on global issues. SEBI releases consultation paper proposing changes to closing auction session and derivatives settlement. And benchmark domestic indices register weekly decline of over 2%.
1: ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स समिट 2026 के पहले दिन नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। नेताओं ने वैश्विक मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण और रुख का सम्मान करने वाले बहुपक्षीय नजरिए को बनाए रखने की बात कही। सेबी ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन और डेरिवेटिव सेटलमेंट में बदलाव का प्रस्ताव देते हुए परामर्श पत्र जारी किया और प्रमुख शेयर सूचकांकों में 2% से अधिक की साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई।
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: ब्रिक्स देशों ने दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ध्रुवीकरण तथा अलगाव की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा 2026 में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक स्तर पर सैन्य खर्च में भारी बढ़ोतरी के मौजूदा रुझान पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सत्र के समापन पर इस घोषणा को अपनाने का प्रस्ताव रखा। अपने समापन भाषण में श्री मोदी ने कहा कि आज अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा सदस्य देशों के साझा संकल्प के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है।
3: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन रिस्पॉन्स

0: इफेक्टिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले। हमने इस बात पर भी बल दिया कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और उनके नियमों के निर्माण में ग्लोबल साउथ की बराबर भागीदारी होनी चाहिए।
1: सिद्धार्थ, ग्लोबल साउथ का साझा संकल्प, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए।
2: देखिए, ब्रिक्स का जो जब बनाया गया था तो ये एक धारणा थी, ये मानना था कि तकरीबन 2006 में और सन 2000 में इसकी कल्पना एक व्यक्ति थे गोल्डमैन सैक्स में, जिन्होंने इसकी कल्पना की और उसके बाद ये माना कि आने वाले समय में ये चार देश जिसमें ब्राज़ील था, हिंदुस्तान था, इंडिया था, चाइना, और तो इनकी ये जो है उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है उनमें इसमें इनका बड़ा रोल होगा और साथ साथ उसमें उसके बाद साउथ अफ्रीका भी जुड़ा
1: जी।
2: तो और उसका जो बेसिक जब पहली बार ये इस ब्रिक्स सम्मेलन हुआ 2009-10 में जो सम्मेलन हुआ उसमें ये था कि कैसे जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हैं उनको कैसे रिफॉर्म किया जाए, कैसे एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जाए, कैसे ग्लोबल साउथ का जो सवाल आपने किया कि उनको जो है कैसे उनको भी इस पूरा जो दुनिया की बदलती हुई परिस्थिति है उसमें उनको भी बराबर का हिस्सा दिया जाए। ग्लोबल साउथ से हमारा मतलब होता है जो ऐसे देश जो डेवलपिंग देश हैं, जो भी थोड़ा पिछड़ गए हैं, पीछे हैं, अभी पूरी तरह से
1: विकास की राह में आगे
2: हैं। हाँ, आ रहे हैं, मतलब विकास की राह पर हैं, आगे नहीं हैं, वो पीछे हैं, उनको भी साथ लेके चलना है बदलते हुए समय के। लेकिन आप देखेंगे जैसा अभी दिख रहा है कि जो मल्टीलैटरलिज्म है, डेमोक्रेटिक जो अलग अलग जो विचारों को लेके जो है अब उतना उसकी उसको समावेश करना या उसको एक्सेप्ट करना, उसको लेके जो है एक विरोधाभास है या आपस में एक तालमेल जिसको कहें नहीं है, या उसे एक्सेप्ट करना कि उस विरोधाभास में भी हम साथ मिलकर काम करें, साथ मिलकर बैठें। तो मुझे लगता है एक तो एक वही सबसे बड़ा वो है, साथ साथ जो अभी दुनिया में हम देख रहे हैं चारों तरफ जिस तरह का जो एक चाहे आप अमेरिका ईरान का हो या अमेरिका ईरान और इसराइल एक तरफ है, यूक्रेन रशिया का जो लड़ाई चल रही है, तो इसको लेके भी चिंता है क्योंकि कि ब्रिक्स का मानना है कि इस समूह का मानना है कि इन सब चीज़ों का जो समाधान सिर्फ बातचीत से हो सकता है, लड़ाई से किसी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता।
3: So Siddharth, to what you said about the leaders advocating for a multilateral approach that respects diverse national viewpoints and positions on crucial global issues, and one major development that has taken place is India's Middle East peace push at BRICS, where UAE Crown Prince met with Iranian President Pezeshkian. So that's a step in the right direction, and the real essence of what is happening at BRICS is showcased in this meeting. Perhaps there could be some outcome, positive outcome.
2: Absolutely, Rajesh. And I think India has been taking this position or making or trying to bring nations with different viewpoints or with differences to talk to each other and bring them to a reasonable some kind of a reasonable dialogue to reach some kind of a solution to the existing stalemate or issues. And as you rightly said, with the UAE and heads of state from UAE or and Iran talking, so I think that's a big achievement for this round of Delhi BRICS leaders meeting, I would say. And we have been saying this, and we've been also saying that India is also trying to push the cause of nations where we see today supply chains are disrupted, trade protectionism is at its height, plus there is stress in terms of fiscal stress, and so India is also trying to ensure that globally there is no the supplies of energy as far as the issue of energy supplies is concerned, as far as other supplies of fertilizer or essential items. So we've been also pushing the cause of those causes also.
3: We have two callers online with us, both from Delhi. First we go to

0: जो हो रहा है, जो बार बार जो जिस तरह से जब से अमेरिका और ईरान के बीच और इसराइल के बीच में ये जो युद्ध छिड़ा है, उसके बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से 40% जो तकरीबन तेल की सप्लाई, तेल और गैस की सप्लाई होती है दुनिया को, वहाँ पे जो पानी के जहाज जिनके थ्रू ये सप्लाई होती है, उन पे हम लगातार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब अटैक्स होते रहे हैं। और एक इस और ये वजह बहुत बड़ी चिंता है, इसी को शायद प्रधानमंत्री ने इसी की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है पूरे ब्रिक्स के सभी देशों का, जो 11 देश इस ब्रिक्स के समूह में, साथ साथ जो पार्टनर देश हैं। और ये इस समय बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब ये हाल फिलहाल में भी हम देखेंगे तो लगातार इस तरह के जो अटैक्स जो हैं पानी के जो जहाज जिनके थ्रू ये सप्लाईज, ऑयल एंड गैस की सप्लाईज होती है, उन पे हो रहा है। तो और बिल्कुल वाजिब बात आपने जो कही, सीफेरर्स जो आप लोग उस पर काम करते हैं, उसको उसका संचालन करते हैं, तो उनके उनकी जानमाल और उनकी सुरक्षा जो है बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात को शायद उठाने की कोशिश की और उन्होंने ये संदेश भेजने की कोशिश की है कि कम से कम ऐसे उपाय किए जाएँ ताकि ऐसी चीज स्थिति से हम लोग बच पाएँ।
1: दिल्ली से हमारे साथ विनय जुड़ रहे हैं। विनय जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: मैम, मुझे पूछना है कि क्या कहते हैं, अगर निफ्टी में किसी स्टॉक का वेट 10% है तो उसमें अगर 1 या 2 पॉइंट की मूवमेंट होती है तो इंडेक्स में कितनी मूवमेंट होती है, नंबर वन। नंबर टू, कि हमारा अगर निफ्टी 20 पॉइंट अगर डे एंड पे एंड होता है, क्लोज होता है 20 पॉइंट प्लस में, तो जो सेंसेक्स है वो उसका 1, उसका 3 टाइम्स होता है, ऐसा क्यों?
0: अमित जी, एक तो आपका पहला सवाल बहुत टेक्निकल सवाल है कि कितना पॉइंट अगर वो चढ़ता है किसी शेयर में, अगर वृद्धि होती है तो उससे निफ्टी पे कितना इम्पैक्ट आता है। और जहां तक आपने उसका बीएसई से जो आपने कंपैरिजन किया, एक वो मोटा अनुमान माना जाता है कि तकरीबन 3 गुना है, बट ऐसा कोई मतलब कोई इस तरह की कोई वो नहीं है कि विनय जी माफ़ कीजिएगा, आपका मैंने नाम गलत बोला, विनय जी, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई उसका कोई ऐसा कोई आधार है कि जिसको हम मान के चलें कि इतना गिरेगा तो इतना ही होगा। हालांकि और इस आधार को भी अभी जो नया सेबी ने अभी जो सिस्टम आया था क्लोजिंग ऑक्शन का, जो प्राइस डिस्कवरी का, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के शेयर्स का, उसमें इस चीज पे भी कहीं ना कहीं एक वॉलेटिलिटी आ रही थी, तो मुझे लगता है ऐसा कोई इसको आधार ना माने आप। और
1: जी, दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी, मार्केट मंत्री टीम को नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मेरा प्रश्न सिद्धार्थ तो ये है सर कि अभी जो ब्रिक्स ने समिट हो रहा है अपने देश में, नई दिल्ली में, तो एक ब्रिक्स करेंसी की बात सामने आ रही है, तो क्या ये ब्रिक्स करेंसी डॉलर और यूरो की तरह ही मतलब प्रचलन में आ जाएगा सर? और दूसरा प्रश्न ये है सर कि जैसे अभी ट्रंप, अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप जी का स्टेटमेंट आया था कि ईरान वॉर कंक्लूड सून, तो क्या ईरान वॉर मतलब खत्म होने के आसार हैं सर? धन्यवाद।
0: नहीं, जहां तक आपकी अमित जी आपका सवाल है करेंसी को लेके, तो इसकी बात जो हमेशा समय समय पर होती आई है, लेकिन ऐसा कोई ठोस अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है जहां पे ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि ब्रिक्स देश आपस में अपनी करेंसीज में अपने जो व्यापार है वो अपनी करेंसी में करें, ये एक इस पर एक जोर है। साथ साथ जो हमारे पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको, जो सेंट्रल बैंक के पेमेंट सिस्टम है उनको कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से समावेश करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी ब्रिक्स की कोई करेंसी इस तरह की होगी या उस पर कोई बहुत सीरियसली विचार हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका दूसरा एक सवाल और भी था,
4: I think perhaps he will call.
0: उनका सवाल था अमेरिका का और ईरान का जो युद्ध है कि वो शायद अमेरिका राष्ट्रपति का वो हवाला दे रहे थे कि जल्दी खत्म हो जाएगा, अभी ऐसा कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो स्थिति आज की है वो स्थिति काफी मतलब चिंताजनक और खराब है, तो ऐसा कोई संकेत नहीं कि युद्ध तुरंत खत्म होने जा रहा है।
4: Moving on, markets regulator SEBI today proposed changes to the methodology for calculating expiry day settlement prices of index and stock derivatives following a review of the newly introduced closing auction session CAS framework. In a consultation paper, SEBI proposed 2 options for determining the settlement prices: a blended volume weighted average price, WAP, based on trades executed during the last 30 minutes, of the continuous trade

0: session, CTS, and the 10-minute cast or continuation of the existing CTS VWAP methodology. The proposals follow feedback received from market participants on the use of the CAS-determined closing price for settling derivative contracts on expiry. Determination of derivative settlement prices based on the closing price arrived at through CAS was among the significant areas of feedback received by SEBI. The Securities and Exchange Board of India has sought comments from stakeholders on the proposals till the 3rd of October. Siddharth, if you could very in simple terms explain to our listeners the proposed changes to the methodology for calculating the expiry day settlement prices.
1: See, Rajesh, I think this closing auction session was a methodology which was brought in by SEBI basically for better pricing, price discovery of stocks which are which have derivatives trading. So I think, and since they came in, there was a lot of volatility being observed in the prices at both the exchanges. So I think, and obviously there were a lot of feedback to the SEBI. I would only also say that it's good on part of the market regulator that they have taken cognizance of this issue and of the feedback and have also proposed a new, I would say, volume weighted average price, which was the earlier methodology to discover the price at the closing of the each session. So I think now what they're proposing is a blend of all three, the continuous trading system plus the blend of volume weighted average price and also the closing, the new system, the closing auction session. So I think basically, and they are also proposing some changes in the timing and also the transition from the continuous trading system to the CAS. So I think these are two, three major changes which they have proposed so that to basically fine-tune the closing auction system that was implemented. And also, I think this is for now, obviously, these are proposals which they have sought feedback. And then finally, what comes out, we'll have to wait.
2: जयशंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: गुड इवनिंग. नमस्ते मार्केट मंथर टीम.
2: नमस्ते
3: सर. आई हैव टू क्वेश्चंस. वन ऑफ कोर्स रिलेटेड टू ब्रिक्स. व्हाट लिवरेज दिस ब्रिक्स हैज, बिकॉज वी वांटेड टू, ब्रिक्स वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम डॉलर ट्रेड, बट हमारा युआन से जमता नहीं है. रशियंस का हम रूबल रूपी से, हमारा रशिया का रूपी से जमता नहीं है. उनको हमारे पास खरीदने के लिए कुछ है नहीं ज्यादा, हम उनसे ज्यादा खरीदते हैं. तो व्हाट लिवरेज, one leverage could happen that we could have de-dollarized the trade and all that, but it's not happening. So what leverage this group as such has, that is one question. Second question is, Adi sir, ye aane wala hai 8th day commission ka, so there will be a lot of cash flow into the hands of the people retired as well as who are employed. So how this will affect the stock market? Will this money flow into the stock market or again go into the properties or and other things which will again jack up the prices of the property but not the market? So what is your opinion on these two factors? So thank you.
1: See, Jayashankar ji, answering your question, I would say de-dollarization was never the aim of BRICS. So I don't think that is right. From day one, I think even if you look at the first declaration, BRICS nations always favored democratization and reforms in the international financial institutions, basically reform of United Nations and also International Monetary Fund, the World Bank, and it should be reformed to now reflect the changing demographic changes, the changes in the world order. So basically that was, and also the other thing was energy security plus cooperation between nations and also supporting these global south, the nations which are still developing. So, and also giving financial assistance and removing trade barriers between nations. So I think all those were the basic aims, and there to a large extent things have moved. And So that is one part of the question. Answer to your second question, 8th pay commission, if I am not wrong, I don't think any money would flow in the current financial year from the 8th pay commission, because the recommendations are still unworks. So I don't see money coming in. So I don't think there is a reason for me to answer that question.
2: मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ रहे हैं. रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: हेलो
2: जी,
0: प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: हेलो, गुड इवनिंग सर.
0: गुड इवनिंग.
4: मेरा सवाल है कि अभी दिल्ली में जो ब्रिक्स परिषद हो रही है, उसमें कुछ चुने हुए कुछ 10-12 नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय जो बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ईरान और अमेरिका का, उसके बारे में उनमें कुछ डिस्कशन होता है कि नहीं? कुछ हो गया ऐसा? कुछ सवाल तो नहीं आया है, ऐसा कुछ होने की उम्मीद है क्या? नहीं तो आपकी उसमें क्या राय है? थैंक यू।
1: नहीं रत्नाकर जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल उस पर डिस्कशन हुआ है और डिस्कशन होते भी हैं। इस ऐसे जब बिसाइड्स यूएई एंड आल्सो द डिक्लेरेशन आल्सो हैज सेड दैट कोई भी जो है युद्ध से किसी भी चीज का समाधान नहीं होगा, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन में इसका मेंशन भी है कि लड़ाई से किसी भी चीज का समाधान नहीं होगा, केवल बातचीत के से ही जो है ऐसी चीजों का समाधान हो सकता है। तो मुझे लगता है रत्नाकर जी, ये काफी ऐसे जब भी ऐसे कोई समूह आपस में बैठते हैं 10-11 देश और साथ में पार्टनर नेशंस भी हैं 20 देश, तो ऐसी चीजों पे बिल्कुल सीरियस डिस्कशंस होते हैं।
2: थाने से हमारे साथ गुरुनाथ जुड़ रहे हैं। गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए। गुरुनाथ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
5: हाँ, सुन पा रहा हूँ मैम
2: जी, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: मैम नमस्कार।
2: नमस्कार।
5: हेलो,
0: आप सवाल पूछें गुरुनाथ जी।
5: हाँ जी, हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है, अभी जो 6-7 महीने पहले जो जो वॉर चालू हुआ अमेरिका और ईरान के बीच में, उससे पहले हमारी मार्केट तो ऐसे लगता था कि 1 लाख तक, 1 लाख के अंकों को भी छू जाएगा, तो ये मतलब अभी जो मार्केट जो नीचे आ गई है, तो इसमें क्या मतलब FIs या संस्थागत जो निवेशक होते हैं या डोमेस्टिक, क्या वो कम हो गए और क्या ये जो और है इसका असर हमारे मार्केट पे पड़ा है क्या? थैंक यू।
1: नहीं गुरुनाथ जी, बिल्कुल इस जो भी जियोपॉलिटिकल स्थिति है, जो दुनिया में इस समय अनिश्चितता है, उसका हमारी बाजार को भी उससे कहीं ना कहीं बाजार में वॉलेटिलिटी है या अनिश्चितता का माहौल से में बाजार में भी है। तो और हम दुनिया का पार्ट हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उस जो भी दुनिया में हो रहा है उससे हम अछूते रहेंगे। साथ साथ अगर आप देखेंगे जो 6-7 महीने में हुआ, टैरिफ को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ टैरिफ ट्रंप साहब आए तो उन्होंने दुनिया भर में टैरिफ लगाया, हमारे ऊपर भी लगाया और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए शॉर्ट टर्म में। और जहाँ तक वेस्ट एशिया जो ये लड़ाई चल रही है, उससे सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है तेल की कीमतें, और हम भारत जैसा देश जो 90% तेल आयात करता है, तो हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा जो इसका एक फिस्कल कॉस्ट है, और कहीं ना कहीं उस अनिश्चितता, वो जो अनिश्चितता है वो बाजार में भी दिख रही है। साथ साथ जो आपने बात कही कि FIIs ने भी पैसा निकाला, लेकिन FIIs ने पैसा सिर्फ इस कारण से नहीं निकाला, FIIs जो नेचर है उनका एज एन इन्वेस्टर, मेरा ये मानना है, वो जहां भी मौका देखते हैं उनको लगता है कि हाँ, वो बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग उनका जो है इंटेंट रहता है, मोटिव रहता है, तो वो वहां पैसा लगाते हैं जहां जिस बाजार में उनको लगता है ज्यादा है। तो ऐसा कोई
0: extent work on sentiments.
1: Absolutely.
0: And positive sentiments are required for markets to
1: yes
0: go.
1: And despite that Rajesh, our markets have not tanked, and even FIIs have withdrawn, even then the domestic investors, both institutional and retail, have posed a confidence in the Indian markets.
2: Any khabron mein श्रोताओं, 4 सितंबर 2026 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 45 अरब डॉलर के से बढ़कर 785.7 अरब डॉलर के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विदेशी मुद्रा संपत्ति 47 अरब डॉलर से अधिक बढ़कर लगभग 648 अरब डॉलर हो गई है। हालांकि सोने का भंडारण लगभग 2.5 अरब डॉलर से अधिक फिसलकर लगभग 114 अरब डॉलर रह गया है। और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से वीरेंद्र जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
6: हेलो
2: जी, अपना सवाल पूछिए।
6: मैम नमस्ते।
2: नमस्ते
6: मैडम, जो जैसे अभी ये सुन रहा था ना प्रोग्राम की, ये सब चर्चा कर रहे हैं युद्ध वगैरह का, ईरान का, अमरीका का
2: जी,
6: तो ये तो कॉमन बात हो गई, सबको पता है, इस पे टाइम वेस्ट करना बेकार है, बजाय इस पे समाधान निकालिए कि जो विस्तार जो लड़ाई की वजह है, लड़ाई की वजह है विस्तारवाद, और विस्तारवाद की वजह है पॉपुलेशन। चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, वो तिब्बत पे विस्तार कर रहा है
2: जी। वीरेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछिए।
0: I think we lost touch with him. In the meantime, we have a story on the RBI.

0: गवर्नर इंटरव्यू प्राची
1: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिटरी और दूसरी योजनाओं से आने वाला निवेश बहुत मजबूत रहा है। एक साक्षात्कार में श्री मल्होत्रा ने कहा कि ये मजबूत निवेश भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में निवेशकों के भरोसे को दिखाता है और कम समय में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की क्षमता को भी सिद्ध करता है। बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी पर श्री मल्होत्रा ने बताया कि रिजर्व बैंक के पास नकदी को संभालने के लिए कई उपकरण हैं और वह जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि ऋण वृद्धि बढ़ने के साथ साथ करेंसी प्रचलन, विदेशी मुद्रा बाजार में दखल और बैंकों की कोषीय आवश्यकताओं के जरिए समय के साथ कुछ अतिरिक्त नकदी को वापस ले लिया जाएगा। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार पांचवें सप्ताह गिरावट आई। ये गिरावट कच्चे तेल के दाम बढ़ने और वैश्विक ब्याज दरों को लेकर चिंताओं के बीच दर्ज की गई। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1733 अंक यानी 2.3% गिरकर 74782 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 500 अंक यानी 2% से अधिक फिसलकर 23398 पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 लगभग 1.5% फिसला, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक इस सप्ताह लगभग 1% नीचे आया। क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो बिकवाली अधिक रही और सप्ताह के दौरान प्रमुख क्षेत्र गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी रियल्टी में सबसे अधिक यानी 6.5% से अधिक की गिरावट आई। इसके बाद निफ्टी आईटी जिसमें सप्ताह के दौरान लगभग 6% की गिरावट दर्ज की गई।
0: सिद्धार्थ, व्हाट इज वेल इंपॉर्टेंट इज इन द आरबीआई गवर्नर्स इंटरव्यू, ही इज रिफ्लेक्टेड स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज एंड कॉन्फिडेंस इन इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एंड आल्सो डेमोंस्ट्रेटेड द एबिलिटी इंडियाज एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल विद इन अ शॉर्ट पीरियड। सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट ही हैज मेड एंड ही इज क्वाइट पॉजिटिव अबाउट द ग्रोथ ऑफ इंडिया।
2: Rajesh, more than the statement that he's made, also the fact that we have got almost close to $130 billion through these FCNR deposits, that itself shows the current state of the Indian economy, the strength in the inherent strength in the Indian economy, and also what he's also reflected that because of this huge influx of money coming in, the liquidity is high in the market, but he's also assured the market that there's nothing to worry. RBI is looking into it. They are completely hands on the situation and already conducting operations to absorb the excess liquidity.
0: Okay. The European Commission has formally submitted its proposal to the European Council to sign and conclude the free trade agreement with India, marking a major step towards implementing the ambitious pact widely described as the mother of all deals. If authorized by the Council, the agreement will become the largest trade deal ever concluded by both the European Union and India. Now, this really augurs well. We don't have time. A very, very, very brief comment.
2: I think it opens up a big market for Indian exporters.
1: बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में आने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए।
2: धन्यवाद आप।
0: Thank you, Siddharth, for being with us. And before we close the headlines once again, BRICS nations adopt the New Delhi Declaration on first day of BRICS Summit 2026. Leaders advocate for multilateral approach that respects diverse viewpoints and positions on global issues. SEBI releases consultation paper proposing changes to closing auction session and derivatives settlement. And benchmark domestic indices register weekly decline of over 2%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

11:40 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप। प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत, आपके साथ मैं विकास।

प्रेम पुजारी इस फिल्म का गीत पहुंच रहा है आप तक और किशोर कुमार साहब का ये गीत छोड़े जा रहा हूं मैं इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। आज के लिए बस इतना ही, मुझे यानी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में होने वाली रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। ये निर्णय परीक्षा देने वाले छात्रों और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने तथा समय पर पहुंचने के लिए लिया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे। बीकेसी स्थित भारत डायमंड बोर्ड्स में आयोजित GJEPC पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे और लाल बागचा राजा के दर्शन करेंगे। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का फाइनल देर रात एलिना रिबाकिना और आर्याना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर जेवरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पे लिखी कहानी यानी गीतों भरी कहानी। तो सुनिए कहानी कदमों में आसमान, कहानी छोटू की। उस दिन नीलिमा देर तक सोई रही। अचानक पापा की आवाज से उसकी आंखें खुली। नीलू बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे अभी तक सोई हुई हो क्या? पापा सोने दो ना, मैं देर रात तक वो अपना फेवरेट शो देख रही थी ना, इसलिए उठ नहीं पाई। अब आज ऑफिस से छुट्टी, नीलिमा अलसाई हुई बोली। उफ, ये लड़की भी ना, ये कोई सोने का टाइम है? तुम्हें अपने सिवा किसी और की भी परवाह है? उठो जल्दी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, पापा ने सख्ती से कहा। तो नीलिमा उठकर बैठ गई। वो फ्रेश होकर हाथ में चाय का कप लिए पापा के पास आ गई। पापा गोविंद राम, जो आंखें बंद किए किसी उधेड़ बुन में बैठे थे। क्या हुआ पापा, क्या बात है? आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा, नीलिमा बोली। उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर नीलिमा के पापा बोले, सुन रहा हूँ कि तुम वो फरीदाबाद वाला फूड आउटलेट बंद कर रही हो और स्टाफ को निकाल रही हो, क्या ये सच है? पापा आपको पता तो है वो चलता तो है नहीं और उससे कुछ प्रॉफिट भी नहीं आ रहा, बड़ी मुश्किल से सिर्फ स्टाफ की सैलरी निकल पाती है। अब ऐसे में उसे बंद ना करें तो क्या करें? नीलिमा, तुम्हें पता है इससे कितने लड़के बेरोजगार हो जाएंगे? और वो लड़का जो अभी अभी गांव से आया है वो कहाँ जाएगा? पापा चिंतित स्वर में बोले, होते हैं तो हो जाए, जहां मर्जी वहां जाए, हमने सबका ठेका थोड़ी ना ले रखा है, और वैसे भी इस दुनिया में कितने ही गरीब हैं, हम किस किस के बारे में सोचेंगे? और पापा, हम उन्हें एक महीने की सैलरी दे तो रहे हैं ना? नीलिमा अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, जबकि उसके पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। उनके दिल के किसी कोने में कोई कहानी घटाओं की भांति घिराई थी और उमड़ घुमड़ रही थी। उनके होठ बुदबुदा उठे।

0: गोविंद राम की जिंदगी की एक घटना भी उनका पीछा कर रही थी। उनकी खामोशी में हजारों शब्द उगाए थे, लेकिन उन्हें चुप देखकर नीलिमा से ना रहा गया। वो बोली, पापा क्या सोच रहे हो? गोविंद राम मानो अचानक नींद से जागे, बोले, बेटा यहां बैठो मेरे पास। नीलिमा पापा की आंखों में देखती हुई और पास आकर बैठ गई। एक कहानी सुनोगी? जी, कौन सी कहानी? छोटू, छोटू की कहानी। नीलिमा अपने पापा की आंखों में झांकने लगी थी। वहां एक नन्हा सा 9 साल का बच्चा नजर आ रहा था और किसी चलचित्र की भांति गोविंद राम फ्लैशबैक में जा चुके थे।
1: ए लड़के, तेरा नाम क्या है? अबे सुनाई नहीं देता क्या तुझे?
0: जी छोटू।
1: ओए छोटू, इधर आ, कहां मर गया था?
0: अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था और आंखों से छोटू की मासूमियत बहने लगी। उसका भोला सच्चा मन कराह उठा। दूर कहीं रेडियो पर एक गीत बज रहा था।

0: जमाना।
1: अक्सर जब छोटू अकेला होता तो याद करता वो दिन जब वो अपने छोटे से गांव में अपनी माँ, बाबूजी और दो छोटे भाई बहनों के साथ रहा करता था। दिन भर गांव में उछल कूद करता, कभी गिल्ली डंडा खेलता तो कभी कंचे। गांव की अमरैया में जाकर कभी कच्चे अमिया तोड़कर लाकर खाता तो कभी जामुन। कितना खुश था वो अपने गांव में। उसके दोस्त भी कितने अच्छे थे। छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते थे मगर फिर सब एक हो जाते। गांव के गंगाराम ताऊ, मुरली भैया, भगत काका और भक्तिन काकी सब कितने अच्छे थे। और एक यहाँ के लोग हैं, बिना बात के ही दुत्कारते हैं, मानो गरीब होना कोई अपराध हो। छोटू को याद आता वो भयानक दिन जब उसके मजदूर बाबूजी के ऊपर दीवार गिर गई थी। वो कुछ दिन बिस्तर पर पड़े रहे और फिर चल बसे। माँ नन्हे बच्चों और छोटू को गले लगाकर कितना रोई थी, मगर किस्मत का लिखा

छोटू की माँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह बच्चों का पेट पाल रही थी। उन्हीं दिनों गांव के जगन काका जो शहर में रहते थे छोटू को काम दिलाने के लिए शहर ले आए थे। उसने सोचा था कि वो शहर में आकर खूब पैसे कमाएगा, अपनी माँ का सहारा बनेगा, छोटे भाई बहनों के लिए ढेर सारी टॉफियां और मिठाइयां खरीदेगा। वो सब कुछ खरीदेगा जो देखकर उसका मन ललचाता रहता है। लेकिन उस नन्हे मन को क्या पता था, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। जगन काका ने छोटू को एक ढाबे पर रखवा दिया था। ढाबे का मालिक एक संवेदनहीन इंसान था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि छोटू एक बच्चा है, उसे बस काम और काम से मतलब था। छोटू गांव की कच्ची गलियों और झोपड़ी से निकल कर आया था। उसने शहर की चकाचौंध नहीं देखी थी। सड़क के किनारे बैठकर जब वो जूठे बर्तन धोता तो उसकी आंखें सड़क पर ही लगी रहती थीं। स्कूली यूनिफॉर्म में स्कूल जाते बच्चों को देखकर उसके मन में भी अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाने का उत्साह आता। अपने माता पिता की उंगली थामे घूमते आइसक्रीम खाते बच्चों को देखकर छोटू का बाल मन भी ललचा उठता। सड़क की चकाचौंध में गुम छोटू से जब काम करने में देर होने लगती तो ढाबे का मालिक चिल्लाने लगता और फिर छोटू सहम कर जल्दी जल्दी काम करने लगता। और इस तरह दिन पंछियों की तरह उड़ते जा रहे थे। मौसम बदल रहा था लेकिन छोटू के नसीब का रंग वही का वही।

ढाबे के मालिक का घर भी ढाबे के बगल में ही था। मालिक कभी कभी छोटू को घर के काम करने के लिए भी भेजता। मालिक की एक छोटी सी बेटी थी, नैनी। नैनी इकलौती बेटी थी। अकेली होने के नाते वो चाहती थी कि छोटू उसके साथ खेले। उसे खिलौनों से खेलती देखकर छोटू का बालमन भी खेलने को होता। एक दिन छोटू को मालिक ने घर से कुछ सामान लाने को भेजा। छोटू ने देखा कि नैनी खेल रही है। उसने छोटू को भी अपने साथ खेलने के लिए आवाज दी, लेकिन छोटू ने मालिक के डांट के डर से मना कर दिया। तो नैनी रोने लगी। उसकी माँ ने नैनी को रोते देखा तो उन्हें लगा कि शायद छोटू ने कुछ कहा है, तो उन्होंने आओ देखा न ताओ और निर्दोष छोटू की पिटाई कर दी। इधर छोटू सामान लेकर देर से पहुंचा तो मालिक ने भी उसे पीट दिया। उस दिन रात को छोटू अपनी माँ को याद कर बहुत रोया और उसने मन ही मन सोच लिया कि कल सुबह वो अपने गांव भाग जाएगा, अब यहां पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। रोते रोते उसकी आंख लग गई तो उसे अपने गांव के सपने आने लगे। उसका प्यारा गांव, उसकी वो स्वर्ग जैसी झोपड़ी जहां उसकी माँ उसे थपकी देकर सुलाया करती थी।

चुपचाप उठा और स्टेशन की ओर चल पड़ा। तभी अचानक उसे याद आया कि घर में बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी मिल पाती थी। छोटू चलता जा रहा था और सोचता जा रहा था, उसकी विधवा माँ दूसरों के खेतों में काम करके किस तरह से तीनों बच्चों का पेट पाल रही थी। कभी कभी तो आधे पेट भी रह जाना पड़ता था। बदन पर कपड़े के नाम पर बस एक फटी बनियान थी। उसे याद आई अपनी झोपड़ी नुमा घर की। घर के नाम पर दो मिट्टी की टूटी दीवारों के बीच एक टूटा हुआ छप्पर था जो बारिश के समय टप टप टपकता रहता था, और चारों प्राणी दीवारों से चिपक कर किसी तरह रात काटते थे। और यहाँ कम से कम पेट तो भर जाता है, कुछ फटे पुराने कपड़े भी मिल ही जाते हैं, और उसकी माँ को ढाबे का मालिक हर महीने कुछ पैसे भी भेज देता है, तो माँ की मदद भी हो जाती है। घर की गरीबी और पिसती जिंदगी के बारे में सोच सोच कर छोटू जड़ हो गया। उसके कदम जहां के तहां थम गए। आंखों में आंसू भरे भारी मन से लौट चला उसी ढाबे की ओर, और फिर एक बार अपनी बेबसी भरी जिंदगी से

ने देखा कि नैनी अपनी मां की उंगली पकड़े उसके लिए टॉफियां लेकर आई है। नैनी ने मां को बता दिया था कि उस दिन छोटू की गलती नहीं थी, तो मालकिन ने कहा कि छोटू कभी कभी नैनी के पास आकर उसके साथ खेला करे। धीरे धीरे छोटू और नैनी दोस्त बन गए थे। छोटू को जब भी काम से फुर्सत मिलती तो वो दौड़कर नैनी के पास आ जाता। दोनों साथ साथ खेलते, बातें करते, लड़ते झगड़ते। बच्चों का कोमल मन कितना मासूम और निश्चल होता है ना? वो किसी भेदभाव को नहीं जानता। वो कौन है, मैं कौन हूँ, मालिक कौन, कौन नौकर, कौन बड़ा कौन छोटा, ये बच्चों को नहीं पता होता। ये तो हम बड़े उनके दिमाग में डालते हैं। बच्चों को तो जरा बुरा लगा, झगड़ लिए, हट कर लिए, फिर थोड़ी देर में सब ठीक भी कर लिया। काश कि बड़े भी ऐसा कर पाते। खैर, नैनी जब पढ़ती तो छोटू भी उसके पास आकर बैठ जाता और टूटे फूटे शब्दों में पढ़ने की कोशिश करने लगता। छोटू को पढ़ना अच्छा लगता था। एक दिन काम से फुर्सत पाकर वो नैनी के किताब से उल्टा सीधा गलत सही पढ़ रहा था। नैनी ने देखा तो उसे सही सही पढ़ाने लगी। फिर उसने छोटू को अपनी एक पुरानी किताब दी और उसे कल पढ़कर आने के लिए कहा। छोटू देर रात तक पढ़ता रहा। अगले दिन उसकी आंख एक जोरदार थप्पड़ से खुली। वो चौंक कर उठकर बैठ गया। उसने देखा कि सामने यमराज की भांति ढाबे का मालिक खड़ा था। मालिक ने उसे गालियां देते हुए कॉलर पकड़कर झिझोड़ा, उसका फटा पुराना बिस्तर उठाकर फेंक दिया। बिस्तर में से कुछ किताबें और खिलौने गिर पड़े। वो छोटू से पूछने लगा, ये किताबें और खिलौने कहां से आए? छोटू ने जवाब दिया कि ये उसे नैने ने दिए हैं। मगर मालिक को छोटू की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने छोटू को चोर समझा और डंडा ढूंढकर मारने के लिए दौड़ा। छोटू धीरे धीरे पिछले पैरों से सड़क की ओर खिसका और पलटकर तेज दौड़ा। अचानक तेजी से आती एक कार ने छोटू को टक्कर मार दी और छोटू वहीं गिर पड़ा।

0: कहते कहते गोविंद राम चुप हो गए थे। पापा फिर क्या, छोटू मर गया? नीलिमा ने रोते हुए पूछा। छोटू की सांसें बाकी थी, उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। किसी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी। जब छोटू होश में आया तो वो एक हाथ से अपंग हो चुका था। छोटू का मालिक एक कोने में खड़ा था, उसके नाम FIR हुई थी। अब उसे बाल श्रम अधिनियम के तहत जेल जाने और जुर्माना भरने से कोई नहीं बचा सकता था। पुलिस छोटू का बयान ले रही थी। बेटा डरो मत, बताओ किसने तुम्हें काम पर रखा था?
1: जी किसी ने भी नहीं, छोटू बोला। मैं अपनी मर्जी से कर रहा था।
0: क्या मालिक ने तुम्हें मारा पीटा? तुम क्यों भाग रहे थे?
1: नहीं साहब, मालिक बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे गरीब को उन्होंने सहारा दिया, उनके बहुत एहसान है हम पर।
0: तो भाग क्यों रहे थे? पुलिस ऑफिसर बोला।
1: साहब मैं तो बस खेल खेल में भाग रहा था, अचानक गाड़ी से टक्कर लग गई। मालिक तो बहुत अच्छे हैं साहब।
0: ढाबे के मालिक की आंखों से आंसू बहने लगे। आज छोटू कितना बड़ा हो गया था, उससे भी बड़ा।

कहा, अब छोटू कहाँ है? नीलिमा ने धीरे से पूछा। ये देखो तुम्हारे सामने। फिर ये सब कुछ बदला कैसे? आप छोटू से गोविंद राम कैसे बने? मालिक का दिल पसीज गया था। मालकिन एक नेक महिला थी, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया। मेरे बचपन का नाम गोविंद था, जिसे मेरे माँ बाबूजी ने दिया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने धीरे धीरे खुद का काम शुरू किया, और अब जो ये तुम रेस्टोरेंट चला रही हो ना, उसी कड़ी मेहनत का परिणाम है। एक बात बताओ नीलू, एक सीमा के बाद समाज को वापस देना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। फिर एक गहरी सांस लेकर गोविंद राम रुके, चश्मे के भीतर उमड़ आए आंसुओं को साफ किया, फिर बोले, नीलू बेटा एक बात कहूं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फरीदाबाद वाला आउटलेट बंद ना हो? कोई बात नहीं, स्टाफ की सैलरी तो आ ही जाती है ना, और वो लड़का जो नया नया गांव से आया है, उसे पूछना क्या वो आगे पढ़ना चाहता है। जी पापा, नीलिमा अब बदल चुकी थी, उसे समझ आ चुका था कि इंसान की जिंदगी का एक नजरिया और भी है, जिसमें अपनी खुदगर्जी के अलावा दूसरों के दुख दर्द को भी समझना जरूरी होता है, और शायद सही मायने में जीना इसी का नाम है।

तो दोस्तों ये थी कहानी छोटू की, कदमों तले आसमान। देखिए कितना अच्छा संदेश था, एक ऐसा लड़का जो अनाथ था लेकिन उसको सही दिशा दी ऐसे व्यक्ति ने, जिसके मन में प्रेम था, विश्वास था कि ये बच्चा एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। दोस्तों ऐसी कितनी ही घटनाएं हम अपने आसपास घटते देखते हैं। हमें चाहिए कि हम भी कहीं ना कहीं अपने मन में एक संवेदनशीलता पैदा करें और ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं एक आसरा दें, एक दिशा प्रदान करने में मदद करें ताकि वो अपने जीवन को सही दिशा दे पाएं। ये सब आप पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हम आप मिलकर बनते हैं एक ऐसी कड़ी जो कि समाज की बेहतरी के लिए काम करता है। तो ऐसे ही इस मानवतापूर्ण संदेश के साथ हम समेटते हैं अपना ये कार्यक्रम जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी। और ये कार्यक्रम से अब रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स

0: कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकता समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जनकेंद्रित और मानवता के प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी, अनेक संस्कृतियां एक लय की भी विशेष प्रस्तुति रही, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने अनूठी सामूहिक संगीत प्रस्तुति में एक साथ भाग लिया। विभिन्न देशों के विविध संगीत परंपराओं से सजी इस सिंफनी में साझा कलात्मक अभिव्यक्ति रही, जिसमें ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और एकजुटता की भावना प्रतिबिंबित हुई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण भी किया। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे। बीकेसी स्थित भारत डायमंड बोर्ड्स में आयोजित GJEPC पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे और लाल बागचा राजा के दर्शन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशभर की लखपति दीदियों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन महिलाओं ने लखपति बनकर सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नई दिल्ली में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। ये दीक्षांत समारोह देश भर में 23 केंद्रों पर आयोजित किया गया था। समारोह में श्री मेघवाल ने नए योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The BRICS nation adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
0: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। Representation, responsiveness और rule making तीनों में सुधार आवश्यक है। आज adopt किया गया New Delhi Declaration हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
2: The 18th BRICS Summit kicked off yesterday with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of the member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action. The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years.
0: अब समय है कि हम BRICS में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और ambitious एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। BRICS की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है। किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
2: After the conclusion of the session on the first day, Prime Minister Modi and the BRICS leaders planted saplings at the venue outside the lawns of Bharat Mandapam and posed for a family photo. They also visited the India Innovates exhibition. Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of the BRICS summit, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since the last meeting in Tianjin in August last year. Prime Minister Modi highlighted that both the sides must be guided by three mutuals, mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest. The two leaders expressed commitment to a fair, reasonable and mutually acceptable resolution of the boundary question proceeding from the political perspective of their overall bilateral relations and the long-term interests of the two peoples. External Affairs Ministry said in a statement that the two leaders took note of the progress in people-to-people ties and underscored the need to further promote cultural exchanges, business linkages and greater mobility between the two countries. On economic and trade relations, they underlined the need to address each other's concerns, including structural trade imbalance and supply chain issues and facilitation of meaningful and predictable market access. Prime Minister Museum and Library hosted the visiting dignitaries participating in the BRICS Summit. They included the First Lady of Philippines, Luis Araneta Marcos, daughter of the President of Iran, Zahra Pezeshkian, and son-in-law of the President of Iran, Hassan Majidi Desaj. During the visit, the dignitaries toured blocks 1 and 2 of the museum and experienced the immersive exhibits at the Anubhuti section. Union Home Minister Amit Shah is on a 3-day visit to Mumbai. During his visit, he is scheduled to visit the Asiatic Society of Mumbai, attend the JGEPC Awards function at the Bharat Diamond Bourse in BKC and visit Lal Bagh Chauraha. At the Asiatic Society of Mumbai, the Union Home Minister will inaugurate a specially curated exhibition of manuscripts titled Sri Ganesh Dhanya Arti. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप गीत सुहाने लेकर माधुरी है आज की रात आप सभी के साथ नमस्कार

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और प्यारे प्यारे गीत यहीं तो आपको सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे ही प्यारे गीतों की लड़ी लेकर आते हैं हम गीत सुहाने के बहाने।

से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. रात्रि के 1:22 और हो चुके हैं पूरे 18 सेकंड. गीत सुहाने का ये सफर है और अगला गीत हम लेकर आए उससे पहले कुछ और बातें भी कर लेते हैं. कल क्या हो किसे पता, लेकिन ये जो लम्हा है ना, ये हमारा है और इस वक्त हम इस लम्हे के साथ हैं और बहे चले जा रहे हैं. नज़र और नसीब में भी क्या इत्तेफाक है, नज़र उसे ही पसंद करती है जो नसीब में नहीं होता. और अगला गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म पारस मनी से.

बहुत ही मीठा सा ये गीत सुना आप सभी ने लता जी की आवाज़ में फिल्म दिल एक मंदिर से। और सच में रात जब इतनी खूबसूरत सुहानी हो जहां ये ऐसे मीठे मधुर गीत चल रहे हो तो लगता ही है कि ये रात रुक जाए, लेकिन समय कब किसी के बांधे बंधा है, कब किसी के रुके रुका है, ये तो बस आगे बढ़ने का नाम है। तो चलिए समय के साथ आगे बढ़ते हुए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं जो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए फिल्म शोला और शबनम से लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

प्यार का बंधन ऐसा होता भी नहीं है कि वो टूट जाए और प्यार का बंधन क्या है इस गीत से ज्यादा अच्छा कौन कह सकता है

ये गीत सुना आपने आशा और रफ़ी की आवाज़ों में, फिल्म नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे से, और इतना प्यारा ये गीत था। और अगला गीत जो हम लेकर आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, उससे पहले ये भी दो लाइनें आपकी नज़र करते हुए कि वो दर्द ही था जो समा गया आँखों में, वो दर्द ही था जो समा गया आँखों में, ज़माने की कितनी ही ठोकरें खाई हैं एक तुझे पाने में।

इन दिनों गरचे दकन में है बड़ी कदर सुखन कौन जाए जौक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर जौक का ये शेर बहुत ही खूब है दिल्ली पर और हमने अभी दिल्ली वाला गीत भी सुना और ये गीत हमने सुना फिल्म परिवार से मुकेश और उषा की आवाज़ों में

माया फिल्म का ये गीत सुना आपने लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में, और गीत सुहाने जो सफ़र है हमारा ये अब बस मुकम्मल हुआ जाता है। तो इससे पहले एक गीत और हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म छोटी सी मुलाकात से, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र

0: तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और टाला नहीं जा सकता। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी तस्वीर भेंट की है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाला चीनी मिट्टी का ये स्मृति चिन्ह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 12 अक्टूबर 2019 को तमिलनाडु के मामल्लपुरम में हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की साझेदारी को और गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष जू चियाचिक से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत की अवसंरचना और परिवहन संपर्क संबंधी प्राथमिकताओं को समर्थन देने, स्थानीय मुद्रा वित्त पोषण को बढ़ाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और AIIB की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपोरा, बारामूला और सोपोर समेत 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये अभियान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तान स्थित संचालकों और उनके कथित स्थानीय समर्थकों के नेटवर्क से जुड़े सीमा पार आतंकी योजनाओं के मामले में चलाए गए। तलाशी के दौरान मामले से संबंधित और भी आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। देश में रक्तदान के क्षेत्र में हरियाणा लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for a commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: The 18th BRICS Summit kicked off yesterday with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the growth in institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between the decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action. The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers' emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times.
2: क्या हम seafarers emergency support network बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की maritime authorities और missions को जोड़ा जाएगा। इससे distress alerts, medical assistance, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: After the conclusion of the session on the first day, Prime Minister Modi and the BRICS leaders planted saplings at the venue outside the lawns of Bharat Mandapam and posed for a family photo. They also visited the India Innovates exhibition. Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of the BRICS summit, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since their last meeting in Tianjin in August last year. Prime Minister Modi highlighted that both the sides must be guided by three mutuals, mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest. The two leaders expressed commitment to a fair, reasonable and mutually acceptable resolution of the boundary question, proceeding from the political perspective of their overall bilateral relations and the long-term interest of the two peoples. External Affairs Ministry said in a statement that the two leaders took note of the progress in people-to-people ties and underscored the need to further promote cultural exchanges, business linkages and greater mobility between the two countries. On economic and trade relations, they underlined the need to address each other's concerns, including structural trade imbalance and supply chain issues and facilitation of meaningful and predictable market access. A special cultural performance, Navarasa, the Universe or Shared Emotions, was presented during the BRICS Leaders Summit Gala Dinner hosted by the Prime Minister at Bharat Mandapam in New Delhi. The cultural event featured the BRICS Symphony, One Rhythm, Many Cultures, bringing together musicians from BRICS members and partner countries in a unique collaborative musical performance. Union Home Minister Amit Shah is on a three-day visit to Mumbai. During his visit, he is scheduled to visit the Asiatic Society of Mumbai, attend the JGEPC Awards function at Bharat Diamond Bourse in BKC, and visit Lal Bagh Chauraha. At the Asiatic Society of Mumbai, the Union Home Minister will inaugurate a specially curated exhibition of manuscripts titled Sri Ganesh Gyanarthi. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप और रात सुरमई लेकर माधुरी है आज की रात आप सभी के साथ नमस्कार कहते हैं ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है

फिल्म कच्चे धागे से ये गीत सुन रहे थे आप अलका याग्निक और हंसराज की आवाजों में। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसे देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले।

लता और शब्बीर कुमार की आवाज में ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म गुलामी से। अगले गीत की तरफ बढ़े उससे पहले चंद लाइनें आपके लिए। बहुत खुश था वो, बहुत खुश था जो महफिल को हंसाकर, बहुत रोया वो घर के पास आकर। यहां आसेब के मारे हैं सारे, यहां तो पेशगोई मत किया कर। सखी एक बांटता है रोज खुशियां, तुलुए सुबह से पहले उठाकर। बहुत खुश था जो महफिल को हंसाकर, बहुत रोया घर के पास आकर।

फिल्म प्रेम रोग से ये गीत सुन रहे थे आप, जिसे गाया लता जी और सुरेश वाडकर ने। बाट दुनिया भर के लोगों जोहता रहता हूं मैं हूं दरवाजा मोहब्बत का खुला रहता हूं मैं। जिंदगी हैरान है मेरी ढिठाई देखकर, मुस्कुराकर गम के चालें काटता रहता हूं मैं। क्या ये मुमकिन है कि सजदे सब हो मेरे रायगा, जबकि तेरे इश्क में ही बावला रहता हूं मैं। और ढूंढने जो भी उसे निकला वो खुद को खो ही गया, लोग कहते हैं मुझे भी लापता रहता हूं मैं। बाट दुनिया भर के लोगों जो होता रहता हूं मैं हूं दरवाजा मोहब्बत का खुला रहता हूं मैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये सफर है रात सुरमई का, जहां बहुत सी बातें होती हैं और साथ ही साथ ऐसे नगमे हम आप तक पहुंचाते हैं जो हम सभी के दिलों को छू जाते हैं। और जब बात इश्क की होती है तो मुमताज़ का नाम आना तो लाजमी है, और जब मुमताज़ की बात होती है तो प्यार की यादगार वो इमारत भी याद आती है जिसका नाम है ताजमहल। और ताजमहल फिल्म से ये गीत आप सभी के लिए।

फिल्म ताजमहल से ये गीत सुना आप सभी ने हरिहरन और प्रीति उत्तम की आवाजों में। जबानों पर उलझते दोस्तों को कौन समझाए, मोहब्बत की जबां मुमताज है सारी जबानों में। जी आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 2:50 और हो चुके हैं पूरे 20 सेकंड। रात सुरमई का ये सफ़र है जो यकीनन आप सभी को बहुत सुरमई लग रहा होगा। चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं हम।

हौसला भले न दो उड़ान का, तस्करा तो छोड़ दो थकान का। जी हाँ, अब तो वाकई थकान से होने लगी है, क्योंकि अब बारी आ गई है आपसे इजाज़त लेने की। तो इजाज़त दीजिए माधुरी को, रात सुरमय का ये सफ़र यहीं तक, लेकिन आप बने रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। अब से कुछ ही देर में प्रसारित होंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण भी किया। इनमें फिलीपींस की प्रथम महिला लुइस अरनेता मार्कोस, ईरान के राष्ट्रपति की पुत्री जहरा पेजिशियन और ईरान के राष्ट्रपति के दामाद हसन मजीदी डिजाल शामिल रहे। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि फॉरेन करेंसी, नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिटरी और दूसरी योजनाओं से आने वाले निवेश बहुत मजबूत रहा है। एक साक्षात्कार में श्री मल्होत्रा ने कहा कि ये मजबूत निवेश भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में निवेशकों के भरोसे को दिखाता है और कम समय में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की क्षमता को भी सिद्ध करता है। बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी पर श्री मल्होत्रा ने बताया कि रिजर्व बैंक के पास नकदी को संभालने के लिए कई उपकरण हैं और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करेंगे। भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैग सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1.85 किलोमीटर लंबी यह सड़क स्वदेशी तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल दर्शाती है। इस तकनीक में स्टील उत्पादन से निकलने वाली स्टील स्लैग को सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में बदला जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदान किए जाने वाले समारोह में कहा कि स्टील स्लैग रोड तकनीक से सड़क निर्माण की लागत करीब 40% तक कम हो जाती है और पारंपरिक सड़कों की तुलना में इनकी मजबूती 4 गुना अधिक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये पवित्र ग्रंथ सदियों से मानवता को निस्वार्थ सेवा, मानवीय गरिमा और एकजुटता का मार्ग दिखाता आ रहा है। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila. The BRICS nation adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
1: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता रिप्रेजेंटेशन रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले
2: The 18th BRICS Summit kicked off yesterday with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the growing institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action. The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times.
1: क्या हम seafarers emergency support network बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की maritime authorities और missions को जोड़ा जाएगा इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स मेडिकल असिस्टेंस परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है
2: आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द सेशन ऑन द फर्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द ब्रिक्स लीडर्स प्लांट

नमस्कार दोस्तों, रात अपनी रफ्तार धीमी कर चुकी है। दिन भर की भागदौड़ जैसे कहीं पीछे छूट गई हो और अब हमारे पास है थोड़ा सा वक्त अपने लिए, अपनी यादों के लिए और उन एहसासों के लिए जिन्हें हम अक्सर दिन के उजाले में महसूस ही नहीं कर पाते। कहते हैं कि कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, बस दिल से दिल का रास्ता होना चाहिए। आप सुन रहे हैं हमराही आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से और मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीता फिल्म अजनबी से। आज की रात हम बात करेंगे किसी से जुड़ने की। किसी से जुड़ना हमेशा उसके साथ होना नहीं होता दोस्तों, कभी कभी कोई बहुत दूर होकर भी हमारे बेहद करीब होता है। उसकी एक आवाज चेहरे पर मुस्कान ले आती है, उसका एक संदेश पूरे दिन को खूबसूरत बना देता है, और कभी कभी तो सिर्फ उसका ख्याल ही दिल को सुकून देने के लिए काफी होता है।

0: से चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन किसी के दिल में अपनी जगह बनाना आसान नहीं। किसी से जुड़ाव शायद यही है कि आप उसके साथ अपनी खुशियां बांटना चाहें, अपनी परेशानियां बताने से पहले उसी का ख्याल आए, कुछ अच्छा हो तो उसे बताने का मन करे और कुछ अच्छा ना हो

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना कोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:28 और ठीक 48 सेकंड। कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग अचानक आते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। सुबह खुलती है तो उनका ख्याल, दिन में कोई बात हो तो उन्हें बताने की इच्छा, शाम ढलती हो तो उनसे बात करने का मन और रात आती है तो उनकी याद। यही तो जुड़ाव है दिल से दिल का और शायद यही प्यार है।

रॉकी फिल्म के इस खूबसूरत गीत को आवाज दी थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। जानते हैं आप, कुछ रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात होती है उनमें बहुत कुछ कहना नहीं पड़ता, आप चुप हैं, सामने वाला समझ जाता है कि आप कहते हैं मैं ठीक हूँ और वह आपकी आवाज़ सुनकर कह देता है नहीं तुम ठीक नहीं हो। कितना खूबसूरत होता है ना जब कोई आपके शब्दों से ज़्यादा आपकी खामोशी पढ़ने लगे। शायद इसी को कहते हैं दिल से जुड़ना, क्योंकि आवाज़ तो हर कोई सुन सकता है लेकिन खामोशी सुनने वाला कोई खास ही होता है।

कभी-कभी दो लोग एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, शहर अलग, रास्ते अलग, समय अलग, लेकिन फिर भी एक दूसरे की जिंदगी में मौजूद रहते हैं। फोन की स्क्रीन पर एक नाम दिखाई देता है और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है और लगता है जैसे दूरी कम हो गई हो। तभी तो कहते हैं दूरी रिश्तों को खत्म नहीं करती, अगर दिलों में जगह बनी रहे।

दोस्तों, प्यार हमेशा आई लव यू कहने से नहीं होता। कभी प्यार इस बात में होता है कि घर पहुंचकर बताना, कभी खाना खा लिया, कभी आज आवाज़ कुछ थकी हुई लग रही है, आराम कर लो, और कभी सिर्फ इतना कि मैं हूँ, तुम चिंता मत करो। ये छोटे शब्द शायद दुनिया के लिए मामूली हैं, लेकिन जिस दिल को इसकी ज़रूरत होती है उसके लिए ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। किसी का ख्याल रखना, उसकी खुशी में खुश होना और दुख में चुपचाप खड़ी रहना, यही तो जुड़ाव है।

रात में यादें कुछ ज़्यादा करीब आ जाती हैं। दिन में जिन बातों को हम टाल देते हैं, रात में वही हमारे सामने बैठ जाती हैं। कोई पुरानी बातचीत, कोई मुलाकात, किसी की हंसी, किसी की मुस्कुराहट, और फिर लगता है कि काश वो इंसान इस वक्त हमारे साथ होता। शायद रिश्तों की यही खूबसूरती है कि इंसान दूर हो सकता है, एहसास नहीं। जिससे दिल जुड़ जाए वो दूरी में भी साथ रहता है।

दूसरी रात उनके नाम जो दूर होकर भी हमारे करीब है। इसी एहसास के साथ मैं अर्चना गोयल हमराही कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। 4:10 पर कार्यक्रम अरविंदों में मैं आपसे फिर जुड़ूंगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। भारत चौथी बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कल पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी, अनेक संस्कृतियों और एक लय की भी विशेष प्रस्तुति रही, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है। समय हुआ है सुबह के 4:11 और कार्यक्रम अरुणिमा के साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार, सुबह के इस खूबसूरत बेला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं ना, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज को सुंदर बनाने का अधिकार हमारे पास है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ईश्वर की प्रार्थना के साथ।

दोस्तों, सुबह का समय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं है, ये खुद से मिलने का समय है। दिन शुरू होने से पहले अगर हम अपने मन से दो बातें कर लें तो पूरा दिन बदल सकता है। आज सुबह खुद से पूछिए, मैं आज क्या अच्छा कर सकता हूँ? किसी के लिए एक अच्छा शब्द, किसी की मदद, किसी को माफ़ करना, या शायद खुद को थोड़ा समय देना।

हर बड़ा बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं, कई छोटे छोटे अच्छे कदमों से शुरू होता है। तो आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि आज मैं शिकायत कम करूँगा और समाधान ज़्यादा ढूँढूँगा। आज मैं चिंता कम करूँगा और प्रयास ज़्यादा करूँगा। और आज मैं खुद पर थोड़ा और विश्वास करूँगा।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:25 और ठीक 25 सेकंड। आइए दोस्तों इस सुबह की शुरुआत करें उस शक्ति को याद करके जिसने हमें एक और दिन दिया है। हे ईश्वर, आज का दिन हमें धैर्य दीजिए, सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने का अवसर दीजिए और इतनी शक्ति दीजिए कि मुश्किलों के सामने हम हार न मानें।

आज की सकारात्मक बात है जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए। हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन कभी कभी रुक कर देखिए, आपके पास एक नया दिन है। सांसें हैं, अपने लोग हैं, कुछ अपने हैं, कुछ उम्मीदें हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके पास फिर से कोशिश करने का मौका है। कृतज्ञता मन को बहुत हल्का कर देती है। आज सुबह बस 3 चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, शायद आपका मन पहले से ज़्यादा शांत हो।

साथियों, क्यों ना आज खुद से एक वादा करें, मैं अपने लिए बुरा नहीं बोलूंगा, मैं अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भी पहचानूंगा, मैं हर गलती से सीखूंगा, मैं किसी की सफलता से नहीं जलूंगा बल्कि उसे प्रेरणा लूंगा, और सबसे जरूरी, मैं अपने सपनों को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि रास्ता मुश्किल है।

वाली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों।

याद रखिए, रास्ते मुश्किल हो सकते हैं लेकिन मंजिल असंभव नहीं। कभी कभी हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए बस एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है एक और कोशिश। तो अगर कोशिश असफल हुई थी तो आज फिर कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी अगली कोशिश ही आपकी सफलता बन जाए।

सुबह सुबह अपने मन में पुरानी शिकायत मत भरिए। कल किसी ने कुछ गलत कह दिया, किसी ने आपको समझा नहीं, किसी काम में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, उसे कुछ देर के लिए वहीं छोड़ दीजिए। हर सुबह पिछले दिन का बोझ लेकर चलेंगे तो नए दिन की खूबसूरती कैसे महसूस करेंगे। इसलिए कल को अनुभव बनाइए, बोझ नहीं। जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना सीखिए।

तो दोस्तों अब ये खूबसूरत सुबह आगे बढ़ रही है और सुबह की सुगबुगाहट होने लगी है और जिंदगी हमें आवाज़ देने लगी है कि चलो आज कुछ अच्छा करते हैं।

इस खूबसूरत गीत और संदेश के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। 5:10 पर भोर सुहानी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। आज ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की और ज्यादा से ज्यादा संयम बरतने के साथ साथ ऐसी कार्रवाइयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया गया। भारत चौथी बार इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी अनेक संस्कृतियां एक लय की भी विशेष प्रस्तुतियां रहीं, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने अनूठी सामूहिक संगीत प्रस्तुति में एक साथ भाग लिया। विभिन्न देशों के विविध संगीत परंपराओं से सजी इस सिम्फनी में साझा कलात्मक अभिव्यक्ति रही, में ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और एकजुटता की भावना प्रतिबिंबित हुई। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कल से 3 दिन का मुंबई दौरा आरंभ किया। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे और हिंदी पर केंद्रित 6th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में गृहमंत्री श्री गणेश ज्ञानरति शीर्षक से पांडुलिपियों की विशेष रूप से प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे वहां पुस्तकालय का दौरा करेंगे, एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करेंगे और उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने अरुण जेटली स्टेडियम में आज होने वाले भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि दर्शकों की आवाजाही के कारण स्टेडियम के आसपास यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। यातायात पुलिस ने बताया कि इस दौरान बहादुर शाह जफर मार्ग, DDU मार्ग और JLN मार्ग पर आवश्यकता के अनुसार यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तित होने की संभावना है। यातायात पुलिस ने दर्शकों को उनके प्रवेश द्वार के अनुसार निर्धारित मार्गों से स्टेडियम पहुंचने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने की उम्मीद है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज और बिजली की स्थिति बनी रहेगी। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने वाले उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग को अपनी तस्वीर भेंट की है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने उस दावे को फर्जी बताया है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली चीनी मिट्टी की स्मृति चिन्ह चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने 12 अक्टूबर 2019 को तमिलनाडु के मामल्लापुरम में हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सस्ते दाम पर वॉशिंग मशीन के पुर्जे देने के नाम पर गुजरात को एक व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए ठगे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after the adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता. Representation, responsiveness और rule making तीनों में सुधार आवश्यक है. आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है. अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले.
1: Today is the second and final day of the BRICS summit. The two-day summit began yesterday at Bharat Mandapam in New Delhi. The BRICS nations adopted the New Delhi Declaration 2026 on the first day of the summit itself. The BRICS nations reiterated their commitment to the peaceful resolution of international disputes through dialogue, consultation and diplomacy. The leaders also expressed their concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. They also strongly condemned the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April last year in the strongest terms and reaffirmed their commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. India is organizing the summit for the fourth time. Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of BRICS summit, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since their last meeting in Tianjin in August last year. Prime Minister Modi highlighted that both the sides must be guided by three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. The two leaders expressed commitment to a fair, reasonable, and mutually acceptable resolution of the boundary question, proceeding from the political perspective of the overall bilateral relations and the long-term interests of the two peoples. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman discussed opportunities to further deepen the India-Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, partnership. The Finance Minister met President of Asian Infrastructure Investment Bank, Zhu Jiai, in New Delhi. In a social media post, Finance Ministry said, discussions were held on supporting India's infrastructure and transport connectivity priorities, enhancing local currency financing, increasing private sector participation, and global presence of AIIB. Anthropic CEO Dario Amodei has called for artificial intelligence industry to slow its rapid development, saying safety measures need time to catch up with the technology. Iraq has dismissed the commander of military operations in Maysan province and reportedly ordered a temporary closure of the Shalom Sheikh border crossing with Iran as a precaution following an investigation into the drone attacks on Saudi Arabia's east-west pipeline. Saudi Arabia had earlier stated that the attacks originated from Iraq, but opted not to respond, instead supporting the Iraqi government's efforts. In Yemen, the Houthis claimed Saudi Arabia carried out more than 100 airstrikes in Yemen over 48 hours, even as the Houthis reportedly made major territorial gains along the Red Sea coast. In T20 Women's Asia Cup cricket final, India will face defending champion Sri Lanka in Dubai today. The summit clash will begin at 8 p.m. Indian time. Seven-time champions, India reached the final unbeaten topping Group A with 3 wins before defeating Bangladesh by 40 runs in the semi-final. Sri Lanka also secured their spot in the final, winning all 3 of their group matches before defeating Pakistan by 4 wickets in the semi-final. Although India remains the most successful team in Women's Asia Cup history with 7 titles, Sri Lanka had previously defeated them in a 2024 title clash, securing their maiden Asia Cup crown. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं सुबह की वेला में कार्यक्रम भूर सुहानी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके साथ अर्चना गोयल। एक नई सुबह, एक नया सूरज, हवा में घुली ताजगी, पेड़ों पर पत्तियों पर ठहरी ओस और पक्षियों की चहचहाहट, जैसे प्रकृति हमसे कह रही हो, कल चाहे जैसा भी था, आज तुम्हारे पास एक नया अवसर है। भोर सुहानी की सुबह की ताजगी के साथ करेंगे कुछ ऐसी बातें जो आपके चेहरे पर मुस्कान और मन में उम्मीद जगा दे। तो चलिए आज की सुबह की शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना के साथ।

दोस्तों कभी आपने गौर किया है कि प्रकृति हमें बिना कुछ कहे कितना कुछ सिखाती है। पेड़ देखिए, आंधी आती है, तूफान आता है, कभी शाखाएं टूटती हैं, लेकिन मौसम बदलते ही वही पेड़ फिर नई पत्तियों से भर जाता है। प्रकृति यही बताती है कि मुश्किलें स्थायी नहीं होती। अगर पेड़ हर पतझड़ के बाद कह देता कि अब मेरे जीवन में बस सूखापन रहेगा तो कभी नई हरियाली नहीं आती। इसलिए अगर जिंदगी में सूनापन लग रहा है तो याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।

सुबह की पहली किरण कितनी खूबसूरत होती है ना, अंधेरों को धीरे धीरे पीछे छोड़ती हुई और आसमान पर रोशनी की एक नई लकीर खींचती हुई। सूरज हमें रोज एक संदेश देता है। हर रात के बाद सुबह होती है, तो फिर हम अपनी परेशानियों से क्यों डरें? आज अगर रास्ता मुश्किलों में है तो चलना मत छोड़िए, सफलता यदि दूर है तो कोशिश करना मत छोड़िए।